दी, एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को सपना आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाईं आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाईं आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछे भी हो सकती हैं सुनने वालों। समूची मूछ, शुभ धन धान्य दूध दही सवारी ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ विजय, बायां भाग कहा सुनी झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछे फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है सुनने वालों।

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन, लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्णमाल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना, यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

वो इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10, 11, 12, 13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

भक्तों, ऐसी धारणा है कि पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख मिलते हैं। लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या, दुख क्या है, इस भजन में इस बात को बड़ी भली भांति समझाया।

ऐ प्राणी, संसार में सुख दुख, भाव अभाव, होना ना होना, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सब सभी प्राणियों को बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुबह शाम की पूजा तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम्हारे दिन के काम काज में एक भी झूठ नहीं होता।

मित्रों, जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ और है, उनसे मेरा जी घबराता, क्योंकि उनके कहने और करने का कुछ ठिकाना नहीं है।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां वे समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी रा

पैसे को तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। अपने अनमोल समय को व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए।

मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है, इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता।

धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता। मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है।

मित्रों, हमने अपने पिछले जन्म के साथ साथ वर्तमान जन्म में भी बड़ी संख्या में आत्माओं के साथ बुरे कर्मों को जाल बुना है। इसीलिए हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म दिखाई देते हैं। अच्छे कर्म के सभी विचारों और कार्यों में अच्छाई के साथ अच्छे अच्छे बात हो, इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि कर्म के अनुसार आपका भविष्य या अगला जन्म तय होगा और वो आप ही करते हैं।

पैसे को तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। अपने अनमोल समय को व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए।

भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा इनके लिए प्रार्थना करें। आंखें जो लोगों में सर्वश्रेष्ठ दिखती है, एक दिल जो सबसे बुरे को माफ कर देता है, एक दिमाग जो बुरी बातों को भूल जाता है मित्रों, और एक आत्मा जो ईश्वर में विश्वास कभी नहीं खोती है, भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। आप भी ऐसे हो या सिर्फ बोलते रहते हो हम भगवान भगवान के प्रार्थना ये है? भगवान के प्रार्थना करो सच्चे मन से, साफ दिल से और विश्वास के साथ मित्रों।

मित्रों, प्यार वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार हमें बहुत महान बना सकता है और मन को हल्का प्रभावित कर सकता है और खुश कर सकता है मन को। फिर भी इस शक्ति का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। मित्रों, दुरुपयोग होता है। इस प्यार की शर्तें पूरी दुनिया में प्यार के नाम पर स्वीकार की जाती है। प्रेम का सच्चा समाज जरूरी प्यार भावनाओं पर नहीं, मित्रों भावनाओं पर नहीं, बल्कि विवेक और आपसी विश्वास पर आधारित होता है। आप भी प्यार को इसी तरह से देखते हैं? जरा सोचिए, सोचिए।

यारों, प्यार का शरीर से कोई विशेष संबंध नहीं है। प्यार का संबंध आत्मा से है। प्यार को हमारे अंदर प्रवाहित होने दें और पूर्ण समर्पण को स्पर्श करें और हम प्रेम के लुप्त हुए बिना हमेशा तेरो ताजा आकर्षिक और स्वस्थ रहे। मित्रों, जीवन के सारे खजाने हमारी दृष्टि अनुभव से प्यार ही उन्हें वापस पाने की एकमात्र उपाय है। इतना शक्ति है प्यार में। प्यार को ऐसा वैसा ना चीज समझो है।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया। पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़ कर जाना है, इज्जत और ये गंवाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं, जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा, रहीम बख्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए। और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाउन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है। और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुन वालो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि डेन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो डेन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया है एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अ ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर ट्यून करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हमें कहो सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

बारी है सुनाए आपको लता और रफी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सिलेक्ट करके रखी है

कितना रोमांटिक, कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। हे संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ दे रही थी लता जी। बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

सुन चंपा और सुन तारा, लता और किशोर जी ने सुनाए, फिल्म का नाम है अपना देश। जी हाँ, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो। जी हाँ सुनने वालों, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो, मीठे बोल बोलते रहो, रिश्ते नए बनाते चलो। जीवन की कहानी को रंगीन बनाते, सजाते और संवारते चलो। क्या लाए थे सुनने वालों, हम क्या लाए थे जो हम लेके जाएंगे।

जीवन के दो पहलू है। हाँ, जीवन है दो पहलू से बनाए हुए, जैसे रात और दिन, आज और कल। और कह रहा है कि मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ही है।

कहते हैं कि जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एक दूसरे से, मिलते जुलते बात करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।

जाने ना। लता जी से आपने सुने फिल्म का नाम इंतकान, इंतकान सुने वालों? हाँ, इसमें हेलन भी अपना खूब कमाल की है।

0: तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जी हाँ, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वो ही जीते हैं जिसको खुद पर खुद विश्वास है। द बेस्ट रेडियो स्टेशन इन टाउन, हाँ सुनने वालों, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जनता के नाम। अजो देन हाग न्यूटन स्ट्रीट नंबर 25 पर है। देन हाग न्यूटन स्ट्रीट 25 पर जो इनका स्थान है, Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft. Denk er niet te veel na. Word niet ziek door jezelf te veroordelen. Verteer jezelf niet. De dingen die niet kunnen veranderen, mensen niet kunnen veranderen. Je maakt jezelf kapot. Je dagen, je kansen, je leven, de mensen om je heen. Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft.
1: Kom maar.

मोनिका, ओ माय डार्लिंग, जिसका नाम मोनिका है तो ये गीत उनके लिए भी पेश किया गया है। साथ ही साथ जिसका नाम मोनिका भी नहीं है तो ये सुंदर सा गीत भी आपके लिए है जो यहाँ से नशर किया गया है। देखो तो फिल्म का नाम है कारवाने खतीन ए नसीफ तक, ये सदाबहार गीत जो आपके लिए पेश किया जाता है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द में एक नहीं हाथ नहीं, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना तो हाथ है ना तो पाँव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। आप बातों से लोगों को दिल जीत सकते हैं और बातों से ही लोगों को भी घायल कर सकते हैं। ऐसा भी है कि terwijl we dingen uitstellen, terwijl we dingen uitstellen, gaat het leven voorbij. कुछ नहीं अर्जस्टाइल करना सुनने वालों, अगर हो सके तो आज ही कर दो। जो कहते कि जो कल करना है तो आज करो, जो आज करना तो अभी कर डालो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं। और ये भी आपको भी एक शक्ति भी देगा अगर आप ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि हाउ दिस इज एन ऑल्टेट इन खदाख्तन, हाउ दिस इज एन ऑल्टेट इन खदाख्तन, एंड दैट सेन एक विल है या एक विल है एक कान है लुक्ट में। एक चाबी है, पॉजिटिव चाबी है आपके वास्ते। अगर आप कहीं ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो और लुक नहीं होते, तो आप ये जरूर से कहना कि एक वेल है एक कान है लुक में। और इसके साथ सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ।

महबूबा महबूबा सुनाए आपको, हम आपसे बता दें, आर डे बर्मन, जी हाँ आर डे बर्मन ये गीत को गाए हैं और म्यूजिक भी डायरेक्ट तक की है आर डे बर्मन, जी हाँ सुनने वालों। और जैसे कहा कि फिल्म का नाम है शोले, शोले नहीं खाती फैफन से फंतखिया, वही मशहूर वही हिट फिल्म

हाँ सुनने वालों, दिल के सहारा आजा प्यार करे, और ज़रूर से प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार से आप है, प्यार से हम है, प्यार से ये सब सारा जहान है। आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आए खुशबू।

चले थे साथ मिलकर और चलेंगे साथ मिलकर, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी, ज़रूर से हसीना मान जाएगी।

महेंद्र कपूर जी के मीठी आवाज में नीले गगन के चले फिल्म हमारा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत सुनने वालों। कहते कि आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ कि क्या सोचूं। एक बार फिर यहाँ से हम सुनेंगे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। हम देखे तो किस फिल्म का है ये सुंदर सा गीत, जब जब फूल खिले। हाँ, जब जब फूल खिले फिल्म से निकाला गया है। और यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं लता जी की आवाज़ में, सुनेंगे सुनने वालों आज इस खूबसूरत तारीख जो है यहाँ पर हम मिलकर और सुनते हैं चलते हैं। मोहब्बत खुद बतलाती है, मोहब्बत खुद बतलाती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसके आँखों में रहना है या किसके दिल में बसना है।

रास्ता सावन होगा, लता जी की आवाज में यहां से हमने मिलकर और श्रवण किए। जरूरत से ज्यादा सोचना, जी हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना भी खुशियां छीन लेता है।

romantis, so romantis. दिल छू जाते हैं ये लफ्ज़े, रफ़ी जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने। सुने वालों, फिल्म का नाम शबनम।

राज राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नजर झुकाते हैं वो। इस बार हम सुनेंगे मुकेश जी की आवाज़ में।

हाँ जी, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। फिल्म का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी आपसे बतला दे, आपने सुने, हमने सुने लता और मुकेश जी की आवाज़ में कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

अंचारे ये नाम था ये दोनों का फिल्म में, और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। किशोर दा और लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने और सुने। दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होता है, दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होती, जिससे दोस्ती होती है बस वही स्पेशल हो जाता है। दोस्त के दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता, दोस्त के दोस्ती में कभी रूल नहीं होता है, और ये सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं होता।

सलम आई मिलन की बेला से ये सुंदर सा गीत यहाँ लता और रफी जी की आवाज में हमने सुने हैं। दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, चांद सितारों से हो तो जन्नत कहते हैं, हसीनों से हो तो मोहब्बत कहते हैं, और आप से हो तो उसे किस्मत कहते हैं।

के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, ये तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस आव में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।

आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज लो में आ गया, फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए है और ये है ओपनिंग सिलेक्शन हमारे हिस्से के प्रोग्राम में। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अनिल भीम आप सभी को सुनाने वाले हैं।

अनिल भीम जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और सरासा हम देखे तो मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी ठोकर से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में।

फ्रॉम द मूवी ठोकर से हमने पेश किए हैं मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और म्यूजिक दिए हैं श्याम जी घनश्याम जी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, फ्रॉम द मूवी पूरब और पश्चिम से हम पेश करते हैं।

फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। इसी फिल्म से हमने पेश किए है कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। यू हसरतों के राह मोहब्बत में धो लिए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अदालत से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में यू हसरतों के दाग फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं और म्यूजिक डायरेक्टर है मदन मोहन जी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा। क्षमा करना सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में।

दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा से हमने पेश किए हैं। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे हम चल रहे थे, वो चल रहे थे मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे, फ्रॉम द मूवी दुनिया ना माने। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं मदन मोहन जी। बंगले के पीछे मेरी बेड़ी के नीचे

अभी आप सुन रहे थे बंगले के पीछे मेरी बेड़ी के नीचे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी समाधि से हमने पेश किए हैं और लता जी आपको सुनाने वाले थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके। हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: द टाइटल फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में, और म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। किशोर डा के साथ में लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं सुन चंपा सुन तारा।
1: Details, echt van jou.

शोरडा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी अपना देश। वह जब पलटता है तो सब कुछ पलट के रख देता है, वह जब पलटता है तो सब कुछ पलट के रख देता है, इसलिए अच्छे वक्त में गुरूर ना करो और बुरे वक्त में उम्मीद ना करो।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी क्रांति से हमने पेश किए हैं चना जोर गरम, मोहम्मद रफ़ी, किशोर डाल, लता जी और नितिन मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। एक और गीत हो जाए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लुई शमाशा लुई।

लता जी के साथ में नितिन मुकेश आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्रांति से भी आपने सुने हैं लुई शमाशा लुई। हमेशा खुश रहा करो क्योंकि परेशान होने से मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि सुकून भी चला जाता है। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगी ने दी हवा फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश की है। आशा भोसले जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले थे। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले फ्रॉम द मूवी लवारिस से हम पेश करते हैं।

आशा भोसले के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। अदालत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है दिल ने माना यार क्या है।

तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। पहली पहली प्यार की मुलाकातें क्या आपको भी याद है?

द ग्रेट गैम्बलर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है, कभी कभी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे। किशोर डा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

गपुची गपुची गम गम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हमने पेश किए हैं। जाने मन तुम कमाल करती हो।

0: भी डरती हो, दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करते हो। लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी त्रिशूल, दोस्ताना है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की।
1: अरे भाई विजय, तुम यहाँ खड़े हो, उधर तुम्हारी सख्त जरूरत पड़ गई है।
2: मेरी जरूरत?
3: अरे भाई विजय, तुम्हारे गाने की बड़ी ही जबरदस्त फरमाइश हो रही है।
4: हाँ, मजाक कर रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर और गाना,
1: आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी।
4: मगर ये इस ऑर्केस्ट्रा पर गाएंगे कैसे, इनके लिए तो पुलिस बैंड मंगवाना होगा।
1: That's a nice one.
3: अरे यार चलो,
1: यार चलो,
3: सोचने की क्या बात
1: है भाई, देर हो।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी है हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल नेक्स्ट टाइम।

तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सस्ती काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज है और आज भी आप लोग को हम समाचार सुनाएंगे। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज भी हम लाइव है हमारे यारो। अगर हमारे प्रोग्राम को आप फेसबुक के माध्यम से और यानी कि देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो जाइए रॉय सुरजमाली पे, नहीं जॉनी नंबर वन पे हमारा फेसबुक है हमारी जनता।

0: तो दोस्तों बहुत गर्मा गर्म खबर है सुरीनाम की और धर्मेंद्रा आएगे भैया स्त्री तो धर्मेन वेलकम ब्रदर आ गया है राज राम लगन भी आकर जुड़ गया हमारा प्रोग्राम में आप सबके हमारा प्यार भरी प्यार भरी प्यार भरी स्वागत है हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। आप लोग को पता है दोस्तों इस समय पे और यानी कि सोशल मीडिया पे सुरीनाम देश में गम्मच मचा हुआ है। गम्मच मचा हुआ है कारण कि वहां पर भैया यहां हॉलैंड में एक आदमी का नाम बा पॉक्स गजराज एक बिजनेसमैन है भैया साकमान है पैसा वाला आदमी है और ओके राजस्थान फर्स्ट इंटरव्यू करी से और राम राम भाई राज राम लगन तो ओके इंटरव्यू करी से तो इंटरव्यू पे पॉक्स गजराज का बोली से छोटा रूप में आप लोग को हम सुना दे है हमारे जनता
1: And that was 4 weeks later. You know, eventually, when both I and the project received approval that it could proceed in Suriname, people were willing to buy land. We weren't going to ask if we could, state land or whatever. The people just wanted to buy. They said, we'll buy it.
0: तो दोस्तों ये नीदरलैंड से फैसी भी है इसमें और बताए गए हैं कि ये आदमी सुरीनाम गए थे और ये है पॉक्स गजराज और वहाँ पर मांगत रहा एक जबरदस्त ने यानी कि दिल बनावे देशवा खातिन 2000 घर मांगत रहा बनावे पॉक्स गजराज वहां पर दोस्तों रेडियो स्टेशन फर्स्ट पे ये जाकर और बताई है और क्या क्या बताई है बोले जब गैल है वहां पे तब बोले जब गैल है तब संतोखी के बोले बैलकरी से कि हम मंगेला 2000 घर बनावे सुरीनाम देश में। हाँ दोस्तों सुरीनाम देश में तो संतोखी बोले वही समैया पे बोले वही समैया बोले हम ले रही ली का बोले हैं देशवा ले रही ली हम तो ओके समय न रहा तो एन आंध्र मनीर पे बोले उपठा दे से का बोले हैगा ब्रुंसवाइक लगे जब ब्रुंसवाइक लगे गैल है तो बोले है कि हम कई मिलियार्ड के बोले हम मांगेल यहाँ इन्वेस्टेर करे और वो बोले हैगा 200,000 की कितना बोले मांगे है यहाँ पे बोले है घर बनवावे और वो बोले हैगा तुलन का मांगे तो ब्रुंसवाइक बोले बोली से कि 2% उपद रखवा के बोले हमारे रीकनिंग वहां पे तू पठा दे हवड़ा कर दे तो बोले तो के हम जितना है बोले हम तो के बोले हैगा सफर खनिंग रीखल कर दे मिया स्टॉक पांचवे प्रोसेस स्टॉक 200% ऑफ मे रीकने द रीखल एक आल फॉर खनिंगन ई अदमिया बोले है और बोले है न कौ द रीकनिंग बेन तो नहीं सीख अदमिया बोले हम थोड़ा बीमार बाटी कि हम जाबे ई चीज कर 3.5 मिलियार्ड एरो के बातचीत है और ब्रेंसवेक बोले 2% बोले हमारा रीकनिंग वहां पे तू धर दे तब बोले कुछ हो ही पाएगा तो ये रमिया बोले हैगा बोले एक फर्टेल यही सो मेर ओवर बॉक्स कैट की ब्रेंसवेक बोले है ओके उका जुका सब बोले भैया बड़ी गाड़ी आ रही देई से रमिया बोले ऐसे बोले तो लो मांगे देश चलाए बोले श्री नामक बोले यूलिसन बनाना बोले बनाना रिपब्लिक है भैया बोले तुन द रेक्टर और अनफांकलक दस्कुंद द क्यूरेटर के बारे में बताई से बोले जो एगो अने होटल ए और हाल यों से बैरक बोले जो हम किल्ली बाटी तो बोले 9 हेक्टार जमीन भी ऊपर रहा 9 हेक्टार जमीन में से बोले नोतार 3 हेक्टार बोले जगह या बेद दे जो वारफान बोले हम ऊपर 2,00,000 कर ले रही बोले 2,00,000 चीज पे बोले सरनाम में बोले हमार 9 हेक्टार जगह जो हम किनेरी होटलवा हमें स्टार जस्ट रहा लियोस बैरक पे आप लोग के पता है बोले ओमा से तीन हेक्टर बोले नोतारस ले लीजिएगा, बोले हैगा बेच दे इसे, तो बोले के बेची से, तो बोले की ओके बेची से का बोले है अने कॉम्बी मार्क के, बोले उस समय पे तू जाने बड़का स्पॉन्सर के रहा बहुता के कॉम्बी मार्क रहा, तो बोले तू नालिश नकल, बोले अत्य से बनाना रिपब्लिक इन सूरीनाम, बोले हैगा सर नाम में, बोले सब कुछ वहाँ बिकाऊ है बहुत इस एनिट में नहीं मार हेड ब्लेव वे एन डी पी यहाँ लिखल है भैया geplunderd, wat valt er nog te verdienen in Suriname? Jeremia Boli zei, buddy, buddy, baat, bolle, we hebben nu een regering, een jaar. Hoe kijk je terug naar het echte jaar, die wat we hebben? NDP is, ja, maar je kan het kijken naar haar. Toen je ze baat, balis, ik er baren mee, bhaiya. Aro, Ronnie Brunswijk, buddy, naraj hai. Aro, Brunswijk ka bolle hai, over Pox bolle, niet alle Hindustanen hebben die lelijke manieren. Vroeger zouden we het in de koffer Verbaag hebben gegooid. Bolle ab bolle uchi jua hama na karab. Ik er maar hebben Brunswijk ke juka uka. MMP ke gari deise. Bolle bandar ander sab banaise bhaiya. To i discriminatie se woord to na chahi gebruik kareke. Wij zijn multicultureel. Je mag niet dit soort dingen gaan zeggen. En op bepaalde bevolkings als mensen ons koelie ook noemen, vinden we ook niet leuk. Hoe kan je zeggen dat Juka AP dit en dat is? Dat mag meneer en Gajaraatje niet zeggen. Zo en zo mensen. Ja, wat we hegen. Bolle hegen. Uitspraken die Pox Gajaraat tijdens een interview bij de Standvaste Radio over hem deed. Hoewel Brunswijk de uitlating zeer ernstig noemt, roept hij zijn achterban op rustig te blijven en zich niet te laten meeslepen door een boosheid. Orbetijgen je hega volgens Brunswijk mogen de uitspraken van één persoon niet worden geteemd als het gedrag of de mening van de hele bevolking was op Hindustani terugkeren is hega. Toen ik er baren mee behoed lamba chowna bhaiya de Brunswijk bari naraj hai ki ii adamia boli je go saakaman hai a saakaman gaila Suriname me investeer kere a usse mangatra ik er opperse 2% le, dat zegt meneer Gajaraj, wat de waarheid dat weten we niet. Dat is het. Tot Chitra Autar bhi aakar 7B se hamara program mein jut gaye hain. Bhaiya Dilip Buddhu bhi aa gaya hai. Aur yahan yahan par kitne log hai jo jud gaya hai hamara samachar. Aap log bas sunte raho hamare pyare pyare janta. Suriname ka samachar hai. देखो भैया क्यूबाने सूरीनाम में बहुत ढेर है भाई, बड़ी क्यूबाने हैं जो आदमी सूरीनाम में हैं। आपके तो पता होगा कि कितना ढेर क्यूबाने सूरीनाम देश में है। हम भी सूरीनाम देश में गरीब भैया ब्रोमफिस क्यूबान के न जाने फरके के लाइक हमारो तो मार के पेल भागल भाई। गैली सिपाही में नालिश कर ली, सिपाही बोले कहे दौराई के पकड़ ले, हम बोली ओके पकड़ अब छोड़ी फोड़ी भोग दे भैया हम हुए रह जावे बेतरे हम कुछ ना बोली। जो सो इस सूरीनाम में से अनफेलक है आज तक कुछ ना भले भैया आन गिफ्ट कर ली है वो तो बस कादक हुई गए हमार बोरक और सब लाश हुई गए भैया जो हीरो तोरा मार एक वॉस हेलमाल हेलमाल क्लार में से एन क्यूबाने हैप्पी हील फिन इन सूरीनाम जोन सबन हुआ परे ने ब्रोमफिस चलावे सुंदर एनग एरफारे बाकी यहाँ बातचीत हो रहा है एगो एक्ट पार के भैया क्यूबान एक्ट पार मतलब दुई परानी के बातचीत यहाँ हो रहा है चित्रा तो दिलप अब देख का भैले क्यूबान के दोंदर दाख के बातचीत है कटली से काटी से ओके कोनो तो बैनाथ पांडे रायश्री भी आ गया है तो आपको रायश्री भी हम प्यार देते हैं यहाँ से हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को तब देखो क्यूबान के काबले रायश्री क्यूबान के बुधवार के ना दोंदर दाख के भैया और बुधवार के रात के बान के समन कटली से काटी से ही बातचीत होएगा मोंगो स्त्रात में और खवापन द रोफर्स में कटली से काटी से भैया और कमोड़ी पे दुनिया ने कपाशों त्रय धल्ले रहा कटली से रहा भैया ब्राउन फिश ओकर चोरी करके लेके भग गए क्वाटा में तो भैया है स्वाइड आल और दोस्तों असाई तो सोशल मीडिया पे जइयो तीर खेरेंगे वहां के बड़ी आदमी गरियावे भैया आज सोशल मीडिया पे गर्मी तुर्क में रहा और घर आवे है और मैं सुरीनाम इस नी बेहतर खबर दिला तो उधर इरलक सैन आलस वोट दूर तो हमारा भैया फतिंगन रामराज भी आ गया है सुतमीर से। तो भैया फतिंगन आप तो बहुत बड़का फैन है फिर यहाँ पे के आपको तो मालूम होगा कि इस वक्त सुरीनाम देश में बोले है सिमोंस बोले है कि हम कुर्सुआ स्टाबिल कर देली बाटी मा कुर्सुआ तो भैया फतिंगर संतो की स्टाबिल कर ले रहा तो कौन चीज तू स्टाबिल कर ले ऐसे ऐसे बात आदमी बोले है। और बाकी दुकनिया के प्राइसवा खड़खड़ खड़खड़ चढ़े भैया खड़खड़ खड़खड़ चढ़े और जो चीज चढ़ जाए उना उतरे जाने हैं ये सब बात है सुरीनाम देश के। तो बोलिए जोन तू वही बतिया है हाल करे दोस्तों यानी सच्चाई कहना हमारा काम है। हाँ तुई फरदाख्तन फॉर फरमुडल के स्थित एन सिस्टर्स प्रोजेक्ट एगो भैया सुरीनाम में कहीं एगो सिस्टर प्रोजेक्ट है परमारिबो में तो यहाँ बताए गए भैया वहाँ पर दुई आदमी दी ट्वेई ताल वोट इरफान फरदा मंस परसोनन दिन दोपहरे भैया पिस्तौल लेके दागी से दुई गो दागी से भैया जेकर पेट में लगल है और जेकर पेट में लगल तो अब तू जाने जितना और खान है तो वही बा ओके ले आए कि सब सिकन हिस में धरी से एट फॉर लोप को ऑन द सुक फॉर द पॉलिसी इज नॉट फॉर द कोमन दैट द ट्वेई फरदाख्तन इन द फलीडर फॉर मुडलक साकन दीने में द स्लाखओवर तू जनता ये सब बात है कुबान के और ना खाली कुबान के दोस्तों और समाचार आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो फुटबॉल वेका होई भाई सब कोई लोबी करे है वेका मा वेका में सबन बोले है जोगी बोले है रख रेंगवा भैया 500,000 डाला भरी से और का बोले है का टेलीफिसी के एसेंट के का बोले है रक्त कीने के बारे में बोले पैसवा कहाँ मिलल बोले ये सब ना बतावे है तो अब गैगरी रसलान एकर बारे में बताई से बतावे यहाँ पे कि तोरिया कैसे है दोस्तों। गैगरी रसलान यहाँ बतावे है कि तोरिया कैसे है यानी कि वो जो 405 तक यानी कि फीफा के पैसवा भर के रखेरिंग बताल द हेल्प फॉर फीफा लाइसेंसी फॉर वी का ऐसे नहीं फियाद एर बोले आधा है तो जब पूरा रह तब तो हो जात भैया ना फिर तब तो 1 million डाला हो जात भैया 405 तक बतावे हिया रखेरिंग साल एस्टीफे बोले फिर अचेल अंडरस्टैंडिंग दे बे फॉर लेडर फीफा लाइसेंसी के बारे में और बोले है फीस प्रेसिडेंट जॉर्ज रेस्लॉन बोले है openbare vergadering met nationale assemblee mee. Volgens hem zal de overheid de helft van de kosten voor haar rekening nemen terwijl STVS het resterende bedrag via sponsoring moet zien op te brengen. Toen ik er waren met Jogi bolle raha kahen sponsors het toen om verwaven he. To ab jai ke Ruslan hier betawe he ki aadha paisa STVS zelf sponsors het khojiga aur aadha paisa rekening bhariga. Toen hier betawe he gaf aan dat de kosten van de uitzendrechten dit jaar naar verluid ongeveer $450,000 bedragen. De regering heeft volgens hem besloten STVS opnieuw te ondersteunen. Tussen naam met paisa na hij kaas met bhaiya. Aur ka bole hega. Admi jarun mangi voetbal dekhe bhai. Dat is ook een recht op alle burgers. Jo een voetbal mangi dekhe. To ye kaam to chahi ho ek lekin probeer. Dit via de sponsoren te halen mensen. Niet हम लोग के स्टार्स इस ऑल हील एल डगमग डगमग भैया और एल्क सेंचस एल्क डबल चूस मुते उम खदराइट वर्ड कि कहां हम दे और कहां ना दे वो भी तो अलमाल हो दी देंगे स्वम कार सिद्ध भाई तुलन तो जानो एक बारे में। अब जनता हम जाई और आगे और आगे जाए क्यूबांसर लेरलिंगन ऑफ स्कूल। अब क्यूबा के बात जो हो गए है तो यहू बताए कि क्यूबा के लड़कन आजकल सूरीनाम में नीदरलैंड से जा सीखे भैया। हाँ het onderwijs in Suriname is niet voorbereid op de komst van Cubaanse kinderen die grotendeels zonder verblijfdocumenten in Suriname wonen en thuis uitsluitend Spaans spreken. Sinds 2020 kwamen netto uiteraard heel larken aan en gare ze van Spaans spreken en ze hebben gezegd dat सूरीनाम के स्कूल में भैया लेकिन सबके घरे पढ़े और सब इलिखाल होले भैया तो कैसे जाइए। यहाँ बताए गए है स्पॉन्स तालक केंद्रन और बोले हैगा ऑन द स्ट्रीट hoog door op leerkracht op de basis van bestuursleer van de vakbond wie sa stree के बारे में है। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता आप लोग को हम और आगे अपना प्रोग्राम को बताते हैं। अब देखो भैया यहाँ पे हम बोले तरी कुछ बैतलान के बारे में बताए तो लोग जानो रोमेनिया में भैया ड्रोन गिरल है जहां आदमी रहे हैं। कुमार शिवलाल आपको हम स्वागत करते हैं। तो ड्रोन गिरल है रुसलान दागत रहा ड्रोन यूक्रेन पे जाए के गिर गए है एगो फ्लैट पे और है रोमेनिया में। और रोमेनिया कौन से भैया उन्नाफो लंथ के आदमी है। अब एक बारे में बारा जुगु जुगु हुए। अब रोमेनियो बोले हैगा कि हम लोग के नाफो लांदे चाहे बसकादक करे के बाकी रसलान ना गए उर्लोक आउटफोर करे रोमेनियो से उजाई के गिर गए है एगो ड्रोन जो उदागर मांगत रहा जाए के उक्रेना पे। तो एक बारे में क्रेमलिन मॉस्को से और बोले हैगा बैतलान से साका मारिया सागारोफा रुसलान के रोमेनिया फरक्लार द सुक के रुसलान के कौंसिल में तोर पर्सोना नॉन ग्राता एंड स्लोथ एंड कौंसिलात nadat een volgende Roemeense Russische drone had geleid tot brand in het vlak nabij de grens met Oekraïne. Obolehega drone incident als een ernstige en roekeloze escalatie van het Kremlin. Het land zelf kondigt aan nog vrijdag te investeren in betere droneafweer. Daarvoor wil het geld gebruiken van een Europese zeefonds leningen. Dus Roemenië of Rusland via Tolonja, Roemenië of Polen Tolonja aan de grens beheegaan. En dat zijn de risico-wekker maar mee. De Rusland zegt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen. De opkomende maatregelen alaiga op ikker bare mee. Jaisi rehega aap log ko hum bataenge Zelensky beschuldigde Rusland van drone in ziden van Roemenië ke bare mee. Hamari janta ab dekho bhaiya hum jai hai Japan ke Suriname mein bhaiya Japan ke auto bhar gaye tulo na pare jane hain kai rakam auto sab Japan ke auto chale hai ek rahi self ko Japan se auto mein se steve ko motor बोलिए जोनी रिक्लाम करे नहीं मदद इस ओक्सो दट वेट वे अलमाल। अब हुआ के जनता जापान के बोले है ए अफकलोपन पांच बरिस में बीते हुए पांच बरिस में 2.5% बोले हैगा अफकनोमन बफोल्किंग फॉर जापान इस अफकलोपन फाइव यार में 2.5% अफकनोमन जनता कमती हुई के 2.5% और बोले दट कोम एरोब नियर की फोरक है यार 3.1 miljoen minder mensen woonden in 2020 en de grootste daling sinds Japan met volgste stelling begon in 1920. Toen in India halker is Japan ke bhaiya India mein aur jada admi hui ge hai Japan ke bevolking bole hai ga 128 miljoen mensen ra 2008 mein yahan bataye gaye hai aur bole is saka hue admiyan hua pe aur tulun jano ho bhaiya baby jo hai forak ya 5809 baby's geboren bij Laam en 1,6 miljoen admin maral ha. तो ज्यादा आदमी मरे दाना बेबी खबर हुए तो बढ़ंती जोन देश के उसका हुई ऐठे पंडरसु ब्लाइड दर जापान 2023 फोर एंड दर्द ऐठ 65 प्लसस बस्टोन दाना सो असर ओक एंड टिंग मेंस 80 यार ऑफ ओदर। तो बोली कुछ जापान के बारे में आप लोग को हम बताई दी कि तोरिया कैसे है भैया, कि जापान में आदमी कैसे कितना जनता हुआ रहे। अब भैया तमाशा देखो तो लोग जानो है ईद उल फितर और का बोले ऑफर फेस्ट रहा। आप सबको बधाई हो, मुबारकबाद देते हैं हम यहाँ से। लेकिन ऑफर फेस्ट भी भैल है पूरा दुनिया में, जहाँ हमारा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं। और जब वहाँ पे अब ये बात हो रहा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भैया सब एक भूल के लेकर बेफल के लेके गए और ओके श्राक्तिक करे मांगी भैया। तो वो बेफल वहां से भागल है भैया, वहां से वो बेफल भागल है। और बेफलवा बहुत मोई लगे बेफलवा देकर भैया ओकर बार और जितना है जो आप लोग सोशल मीडिया पे ये तो देखिए ओकर नाम सबन धरे से गा दोना त्रेंपन लगे भैया ओकर बार और सब बगलिया में ऐसे झारल है हाथ दी मार ए फकैकर। और ओकर नाम अल्बिनो बेफल बांग्लादेश में, और वो भाग्य है तो इतना मोई लगे वो बेफलवा मतलब वो भूल जो है हम लोग का बोले लोग के भैंसा बोले ना मेरे ख्याल से। तो ओके सबन बोले ओकर गटाई ना काटीगा तो ओके ले जाए के को धीरन तैन में धर दी से बोले दा दोर से ब्लोंदा हार दोनाल त्रिम पोर्ट खनुम ओकर नाम विफलवा के धर दी सबन दोनाल त्रिम भैया प्रेसिडेंट जो हम लोग के अमेरिका के वन ओकर बरवा परसीस ओइसने लाल लाल बगरिया ऐसे झारल है। तो कुमार शामी भी आ गया है, आपको हम स्वागत करें, चांदनी जितन भी आ गया है, मतलब कि राकेश आ गया है। हाँ तो राकेश जी आपको हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड शहर से मेरे ख्याल से। हाँ तो यहाँ बताए गए है कि ओकर गटई ना काटिस। अब बांग्लादेश के रखेरे का करी से ई भैंसा के ले जाए के दीरन तैन में धरिस की तुलन एके काबुल है अने पोसो फॉल्क मिर्धा हेत है दीन बिसोंदर सख्त अर्ध का करैक्टर द ब्रूर फन द मिरांडा बदाख द बेनाम डोनाल्ड ट्रम्प ओम दे से कैप्सूल एरक लाइक ऑफ दैट फ्रॉम अमेरिकनसे प्रेसिडेंट और 680 किलो के बा वेगन द बफल वेट एयर दे से वीक verkocht om donderdag geofferd te worden tijdens de offerfeest. Het is moeilijk om afscheid van hem te nemen, maar een offerdier is voor de offerfeest. We zullen Donald Trump voor altijd herinneren, zei Mirda tegen de krant. Maar op het laatste moment werd het dier gered van de slag. Volgens de Bangladese minister wanneer donderdag tijdens offerfeest zoveel mensen op de buffel afkwamen dat het niet meer veilig was. De Bangladese overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald en het dier is momenteel in de dierentuin van hoofdstad Dhaka. Ja, aanploen je joh, ja. Dhaka, te jeroer je joh. Aan de jane Bangladesh ke Donald Trump ke dekhe. Ye baat hai hamare pyare pyare janta. हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हैं। ताजा ताजा ताजा ताजा खबर भैया, घर में सुखना है सुरिनाम देश में, घर बैठे सब तो के मार पीट के लूट लेवे भैया, लूट लेवे है। यहाँ पे देखो एगो जगह के नाम है बेला दोना स्ट्रात सुरिनाम देश में है, और वहां पर कौन लेगे भैया चर चर लुटेड़ा। हाँ रात के और गैल 1000 एसआरडी लूटी से भैया, तो चार मिला कि कई मिला रहा कैसे बटिए पैसा। और एगो में मोबाइल टेलीफोन और बोले हैगा अरमिया बोले फॉल्कन्स एम का हाथ है नेट्स एंड एरबल जैसे वो घरे गईल है उतरे में चार आदमी के अनफाल करी से पिस्तौल ले के बदरेक करी से और ओकर ताश ले गए स्पिलर है ओए मैं खाली 1000 रुपया पैसा रहा भैया 1000 रुपया में तो हुआ का बोले हैगा कौन ची पहिए भाई बाकी उतरा बड़का ऊपर फाल सबन करी से पिस्तौल ले के। तो ये बात है हमारी जनता। तो एगो बहुत जबर बोमा मिलल आना कोंदा ना लाओलाओ चीज हैगा बुद्धू चांदनी जबर जस्त तू जाने सरनामे बूढ़ा भाई पानी इतना बरसल है, चारों बगल बूढ़ा है, तो जनावर अजगर जितना चीज है सब अपन होल छोड़ छोड़ ऊंचा भगे है। तो यहाँ बताए गए हैं सूरीनाम में बरखा से गो वो वेख है वहां पर जहाँ आदमी रहे है, जबरदस्त बोमा हुआ गैल है भैया, और इतना भारी बोमा हुआ गैल है रेप्टिलन खान तैने स्वार रही कर फाक ऑफ द सुकना द्रुख एंड फेल का प्लेकन यहाँ लिखल है। अपना लड़का के बचाई के रखियो भैया, औरतियों के पकड़ के बैठियो, वन बोमा ना देखे ती लड़का है कि कौनची है, मुर्गी है के डुक्सी है, ओके जब महकल, ओके जब महकल तपू तो के लपेटी एगो खराफ मशीन से जे के सब बोले है पोकलेन, ओसे सबर टांगी से हम खुद इतना बड़का बोमा ना देख ली भैया, बहुत जबरदस्त बोमा है। और बताए गए है द साम लीफन वर्ड आर्टिफिशियल अलर्ट ब्लेफन में से फन दिस सोर्ट अन रेप्टाइल बेस्ट में से आप लोग को ले जाए तेरी कालम की ओर। हाँ कलम के संगे भैया बारा छिछा के लेदर है नानी, वो छिछा के लेदर है भैया। कभी देखियो तो कलम में आए तब उस सबके सूरीनाम में सांदराई पे देखिए फरकेस ले दे न जाए के कायन में उतरे तो गायना में, अब दूसर चकल्लस भैल है नानी, दूसर चकल्लस भैल है। और वो बताए गए है कि कलम के बोले तेलवे ना पाई सरनाम में भरे के केरोसिन, तो बोले वो उड़ के गैल है फ्रांस कुयाना में भरी तब उन्दलांतर खायल इसके बोल पे भैया। ये बात बतावे है कालम, अब सूरीनाम के हुआ पे सब संदराई के आदमी ऑन द सुक कर की चीज हुआ कैसे है, तो बोले कालम बोले झूठ बोले है, बोले अब दैलक आयल है ब्रांस्ट ऑफ क्वेस्टी रोंड कालम जो योहान अदोल्फ फेंगल इंटरनेशनल लुखाफन सूरीनाम में बा, मंगलवार के कालम जाए के फ्रांस कुयाना में भरी से तेल, तब उजाई के उड़ल है और मेल पे बोले सन्ना में बोले तेल ना है। तो यहाँ बताए गए हैं फोल्कस वार्निंग मस्तास ओली डायरेक्टर एडी फ्रंकल बोले ये बतिया नकलोप होएगा, और बताए हैं कि चीजवा ऐसे ना है, बोले कालम बोले पैसा ना भरी से द क्वेस्टी ड्राइव फोल्कल फ्रंकल ओमन बताले हस्किल तिस कालम एंड गो टू द डॉन द डॉक्टर मास्कपेई फ्रॉम स्टास ओली वार द फ्लिक maatschappij brandstof afneemt van GoTo, willen bij het betaling van een brandstofrekening ook een fee namens de luchthaven en draagt het bedrag vervolgens af aan de luchthaven. De paisanam harera bhaiya, kono feise to i KLM itara jhoot bolis bhaiya, lekin sachai kaise hai, KLM heeft GoTo in middels in kort geding gedagvaard de zaak dien vrijdag 29 mei door te gaan. To betalen KLM Saudi die fee al langer tijd niet betalen. Daardoor heeft GoTo het bedrag volgens Frankel meer dan een jaar voorgeschoten. Inmiddels zou de achterstand flink zijn opgelopen en wil GoTo dat KLM eerst betaalt voordat het brandstof wordt geleverd. Maar zo is het mensen. Toen mangen he, kabole hega paisa na bhare, te kamua thoro bani KLM to hum log ke prijs chadhai se, te kahe na jai ke Suriname ke tel ke paisa bhare aur janta pe laaye. आप लोग के साइड मालूम है भैया हम कालम के बेइज्जती ना करीला, मार एक है पर सेल्फ मी खमा मिस्किन है वो यूली ओक मी खमा, जब तू कालम में बैठियो भाई और वहां पे तरी से इसके फॉल पे जो फरतराखें हुई है तरी से लाती हुई है, जैसे कि ओके उड़े के 12 बजे मान लिया जाए, अब 12 बज गए ट्विन तक मनीतन ऊपर हुई गए, तब तू जाने का बोलेगा, बोली पासा चिरुआ कोफरवा भीतर हम आई गए, मैं पासा चिरुआ पता ना कहाँ जिस वजह से बेच सकते कोफर तरक तलाद एक है पन पार कर मेकअप ऑफ दैट waar is mensen, dat weten wij niet. Maar als ik de situatie lees over de kerosine probleem van KLM door Ulkaliski zijn naam te tellen hij, waarvan de situatie dat KLM niet betaald had, dan geloof ik KLM heel minder die mensen. KLM gaat elke keer draait diezelfde plaatje. Die persoon is nog buiten, die koffer is ingeladen en die koffers worden weer teruggezet, waardoor wij nu een beetje laat zijn met KLM. Dit heb ik niet één keer, diverse keren dezelfde bandje draait daar mensen. To Ursula Bagus Samuch bhi aa gaya hai. Auro yani Rakesh Samuch ke niche Ursula Bagus Samuch bhi aa gaya hai. Ta aapko hum yani Pandit Tilak Dhari Vekh se swagat karte hai yahan Den Haag se aapko. जनता और अब जाएला चिनैनी की ओर नानी छाउमांग छाउमांग छाउमांग चिनैनी की ओर जाएला भैया चिनैनी की ओर हम जाते बोलिए जॉनी चिनैनिया नासी बनाई इसकी बामी बनाई से चिनवा चिनैनी 40 बरिस के चिनैनी भैया बातचीत हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रांड के बातचीत हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रांड के बातचीत हो रहा है और बताए गए है बोले एगो टिप क्रेग द चिनैनी से फ्रॉन Op het betreffende adres onder dwang werden ingezet voor protestueel bhaiya ego tip sipahi ke milal hai ki wahan par protestueel ke kaam chinaini kare hai ye baat ho raha hai Wolfram Straat mein bhaiya lo na jaiyo 12 inch hoy ge sarnam mein जूता पहन के जाइयो हमारा भैया लोन सूरीनाम में बहुत जबर हाई फीरस हो गए हैं हमें याद हो गए हम बताएला बीते हुए दिनों में इसका न्यूज हम पठारी बुद्धू कान खोल के सुन ले ना जइयो जची रही लगे हम अदरसवा यहाँ देला वोल्फ्राम स्ट्रांड में भैया वहाँ पे मेंशन हैंडल हो अतरा चिनुआ के त टेप मिले है त बोले अब बत्रे फंदा अंदर अंदर दुआ वर्दन इन खसेन

और दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है, इसीलिए हमें इसको तरी से रोक कर अपना समाचार को आगे लेकर चलना है। तो टोनी श्री आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मालूम नहीं कार में है कि बस में है, लेकिन है रेडियो फोन पे। तो दोस्तों हम चलती है, यहाँ बातचीत हो रहा भैया, सब कोई बोले पड़ोसी नैली रघुनंदन महावीर आ भी आ गए हैं। तो नैली सब कोई बोले हमारे पड़ोसी भैया, अच्छा पड़ोसी बोले बहुत खुश नसीब वाल को मिलता है। हाँ जेके खड़े वही मोई बिरमान पाई बिरफराव पाई पाई के लिए करो खच्चड़ भैया एंट वे दरी लगी देर बैल दबावे। लेकिन यहाँ बातचीत श्री नाम के हुए है, यहाँ बातचीत हो रहा है श्री नाम के लुकास्त्रात के बातचीत हो रहा है। यहाँ पर जब तू बाजा जोर बजाइयो भैया, देर बैल दबाई पकड़ ले रहेगा भाई, ये कुछ रही डायरेक्ट क्लाक्त। तो मोतर फिच पे लोग जा रहा है, फिर भी रेडियो फाहन को सुन रहा है, दोनों हाथ से स्थिर को पकड़ना जोर से। हाँ और यहाँ बताए गए हैं एक 25 साल के फैफन तुम्हें तक यारक क्लेरेंस है। बतावे गए सूरीनाम में भैया एक सिपाही पकड़ी सी का कर ले रहा भैया, ये का करेला लुकास्त्रांत में। बताए गए है ना एक नाई कई बार भैया, वार है फोकस ऑन हिज हेयर हार्डल फॉर एनस्ट को ओवर लॉस एंड बदरेकिंग हिज को सोरख पाए। सूरीनाम देश के बात है, बोलिए दमिया दुरुक्स फॉर सलाफ वीर मनवा हमारा बा। तब तो और गड़बड़ भैया, जब तू दुरुक्स पीयू के नशान रही है तब बता इसे फरकलाल अल खरोमत हिंदर तो अंदर फिंदर फनहार भीरमान क्लारेंस फोल्कस हार इसे दुरुक्स फरस्लाफ्त। और बताए है सो ईर्दर हेबन खदरेगत हर वो ने इन भ्रंत स्टेकन दरना सो है यार एन हार खसीन स्टेलसल मातक हेबन लस्त खफाल एन बदरेगत मेंस। तो ये बात है इजुंकी जाए के अपन बीरमान के बदरेग करत रहा भैया, कई बेर बदरेग करी से और लड़त रहा उसे जो कर सलाब कमरा में भैया जाए के और रोका बोले एस्कालेर करी से इसे होर्द फरदाख्त तकीर खान वरना से स्लाप की आमर में घुस गए भैया। तो जिनकी तोर बगल में है कोई ना मांगे ऐसन बीरमान भाई, सब कोई मांगे हमारे बीरमान नेचस रहे। बोलब की बीर फ्रो हमें शुक्रू लेनी कर दिए, तो के बोले के कमवे नोलाए के तो के मीठा मीठा शुक्रू रे अगर देखो चुम्मा भी दे दे मीठा मीठा। दोस्तों ऐसन बीर फ्रो चाही और बीरमान हमारे पेड़वा झुक गए तरी काट दिए ना बीरमान। बोली बोली तो के बोले के काम है ये ना हम अपन काम छोड़ के आयला करे, तो ऐसन बीरमान ना चाहेगा तो नहीं। तो ऐसन बीरमान नसीब वाला के मिले भैया, ऐसे थोड़ो मिल जा। आप देखो शाया का बोले है मेक्सोन शाया हाइथियान है भैया माओ का बोले है मिनिस्टर फॉर यूजीसी एंड पॉलिसी के और मनोरथ के हनीस मनोरथ के बोले आज फिर है और एक कोई मंगबे ना करे भैया वहां पर जेन साया मिक्सोन का बोले है बोले 10 गो पिकअप बोले हम देती लांटी के सीकर उही के मारे पिकअपुआ खातीन के माता अश्विशेर बनावे। तो हैतियान के बोले रहा बोले 10 गो बोले 10 गो बोले पिकअप हम ले ईफर करती आंसरी नाम से ओवर हेड के सो दैट वेरक्स हम ही इन बेहतर आउट को फूड कॉर्नर वार्डन एंड हमेश का दारफान ओक सो कुन प्रोफिटेरन निश्चित है दारफान अन daarvan af vanwege de negatieve uitlaten richten hem naar dat betekent. Bekend werd dat hij adviseur is van Jusbon minister Haris. Manorat bole ki ap hole hem pikepua na debe omdat je adviseur na bati admino klak karite bole hem na debe das go pikepua to ta Haris Manorat ke isse bole iste ta lalish deishu bhaiya Haris Manorat ke ki to ke hem 5 go pikep debe hame tu bana le apan adviseur ta janta hua pe bahut kritik leif te bole hem pikepua na debe. Het soort stoort de voormalige VHP sponsor vooral dat hij in een DNA zwaar is bekristeerd. Obole terwijl hij juist iets goeds voor het land wil doen mensen. To bina bhaiya chara ke machri na mile hai. Bhaiya somar pikepua to thoro di hai.
पांच गो पिकअप दी है तो तुम मंगिए ओकर दस गुना लांठी से लेवे। और ना ऐसे जमाना है ना भैया बुद्धू, सोसो में कोई एक झांपड़ ना मांगे मारे तो पांच पिकअप दिए साया, तू सोचा हाइतियान हम लोग बाटी का? ना ना ना ना, बोले आलस हीफ्ट आलस हीफ्ट अन रीडर मेंसेस ओंडर द मिनिस्टर हैट वेट एक हैव 26 पिकअप्स जी ओंडर वेक zijn en ik zou daarvan 10 pick-ups aanleveren. Willen ze, mochten ze nemen en wanneer het geld er is, konden ze me betalen. Ook al is het na 5 jaar, maar door die jugu jugu ga ik je eerlijk zeggen, dan mi abi kanami ede, zei Shaya in de interview. Bole hum na debe, to ye baat hai, Shaya ke baatjeet ho raha hai, Haitian ke bhaiya hi kahan itra paisa paise, ab ekar batiya chahi on the suk kare ke to, lekin hamar Suriname mein kahan hai fiat bhaiya, glat hai, baki koi obdraag na debe hai, ki isa manayyan ke tu jatari on the suk kar ki tu, itna din se deswam baate, kahan तू इतना पैसा पहले है, कैसे तू इतना मोनी मांग हुई गेले, ना खाली एके ना खाली एके मा और तो के चाहे अंदर सुख करे के चीजवा कैसे है। तो ये बात है हमारा प्रेसिडेंट सुरिनाम के जेनिफर सिमोंस अपन पूरा दिल खासी लेके ब्रासिलिया में गए भैया, अपन आदमी के भी ले गए हैगा। बोले ब्रासिलिया से लुख मार अफगरेस ना ब्रासिलिया फॉर ऑफिशियल बसुक है सुरिनाम से स्टाटसोफसाल आंसर ter eveneens officieel bezoek brengen aan de Dominicaanse Republiek. Toen waar bij jij ga, Glenn Geerlings ook aan het meebegeel heeft, delegatie leken, maar in welke hoedanigheid hij aan de reis deelneemt is vooralsnog onduidelijk. Waarvan Simons bolle raha, bolle ook aan het meebegeel heeft, ik kom een regering met deelnemen nakker heeft, maar toch ook aan zijn ja heeft, maar ook aan het meebegeel heeft, ke ticket bharé, ke na bharé heeft, ek er baare mee kuch pata na hai. Aap loon jano bhaiya, ego हिंदुस्तानी भैया, एगो हिंदुस्तानी बस शफेर है, स्कूल के लड़कन जन मोई ना रहा, बेमरिया तरी लड़कन रहा, ओके जाई के बतस्त करत रहा, एगो ड्रीम फाइव तक या रखे हिंदुस्तानी बस शफेर है, और एके भैया हॉफ में गईल है, एके मांगत रहा, ने छोड़वावे, और ये आफका चंद्रा अलगू बोले दार्मी ब्लेव द एडबस लीसिंग वार में अन होल्डिंग एंड फॉरसेकिंग स्टेलिंग फॉर द फरदख्त रहमातक वर्दन फरक्लान फॉर in stand op bolle hega 20 tarik mei ke oke sama pakadi se jema an kind in sen bus of heaven batas het verzoek op basis van artikel 54a wetboek strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoger beroep in tegen de bus kicking. तो ये सब बात है हमारी जनता। तो हम एक दो समाचार और आपको सुनाएंगे। अब देखो भैया फोरख रखेरे लेंड एक बार रखेरे लेने कल रहा पांच बरिस में 2.2 मिलियार्ड अमेरिकन डॉलर और एक बरिस के भीतर में 1.8 मिलियार्ड लेनी दस महीना में करी से भैया फोरख रखेर से तो की 2.2 मिलियार्ड लेनी कल रहा पांच बरिस में और यहाँ सिमोंस के रखेरिंग और रुसलान के रखेरे 10 महीना में 1.8 मिलियार्ड लेनी कर चुकल है। एक बारे में मिनिस्टर आदलिन वेमर मान फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग सो यश कमेल इन द नेशनल असेंबली टेंडर्स द बहांडलिंग फॉर द वेजिंग फॉर द कंपटेबिलिटी विद 2024 में मिनिस्टर वेमर मान गिंग फर्दर इन ऑफ द लीनिंग एंड द डोर दिस रखेरिंग सेइंग गनोमन। तो ये सब बात है दोस्तों। और यहाँ पे बताया द स्टिक्टिंग सिंगल मॉडल प्रोजेक्ट सुरिनाम ओवर द मेंस्ट्रुएशन के बारे में बोले हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्टर फॉर मिंद्रन स्कूल एंड वर्क फॉर सेम ऑन द फ्रॉवन एंड मेजर्स इन सुरिनाम। तो भैया रंजीत लक्ष्मी नारायण सिंह भी आ गया, सीता दिहाल भी आ गया है, टोनी इस्त्री आ गया है। इसी प्रोग्राम्स एक गिर के से आज हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेगा। नली रघुनंदन भी आ गए हैं, धर्मेंद्र इस्त्री, राजराम लगन, चित्रा अवतार, दिल बुद्धू, यफतिंगन राम राज, रंजीत, राजा अयोध्या, टोनी इस्त्री, चांदनी जितन,
कुमार, शिवलाल, ये सब हमारा प्रोग्राम में आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में भाग लेने को। आने हुआ हफ्ता में हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। बाय बाय, नमस्कार।

दोस्तों, कार्यक्रम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार नहीं होती कॉम्पोज बायोडिस्ट कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हेप्त्यूनाश तलीफ है, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे सरनामी संगीत, एक से एक बेहतरीन गाने वाले हमारे सुरिनाम देश हॉलैंडियस का। बाद में कुछ छोटे छोटे बच्चे के सुपरहिट सॉन्ग्स आप सुनेंगे, फंसीफ ततमत फिर तीन यार डायरेक्ट फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, भारत का शान आप सुनेंगे और भारत के आने वाले संगीत के भविष्य आप सुनेंगे। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस साल में हो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को याद करते हैं, अपना ढेर सारे प्यार मोहब्बत आप सभी तक भेजते रहते हैं। रफी साहब।

गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सुरीनाम देश का एक जबरदस्त गायक, बैठक गाना का गुरु, उस्तादों का उस्ताद, इंटरनेशनल कलाकार एंड मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, उस्ताद रॉबी उदित राम जी के मधुर आवाज में आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ एक अति सुंदर भजन के साथ कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो।

एक हमारे सूरीनाम देश का उस्ताद का उस्ताद डिग्रेड श्री रॉबी उदित राम जी। अगला बयान एक नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का, जो काफी नाम कमा चुका है सूरीनाम देश में और कुछ दिनों से हॉलैंड देश में आकर बस गया है। टैलेंटेड कलाकार, सभी साज बजा लेता है और साथ ही साथ बड़े प्यार से गाता है भी। द ग्रेट सुजल उमराव बरसतिया में।

शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार और ग्रेट सिंगर फुल टैलेंटेड जबरदस्त गाता है और जबरदस्त बजाता है सुजल उमरो। अब एक और महान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार पंडित श्री कृष राम खेलावन जी के अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान कि सब दिन होता ना एक समान। पंडित श्री कृष राम खेलावन जी।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश लाइव रिकॉर्डिंग पंडित श्री क्रीस राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में जी चंद्र बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया है और ये कार्यक्रम आप सभी के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है डायरेक्ट फ्रॉम फाहोर हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो धनहा शहर से। अगला बयान एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडिस का द ग्रेट शिवम राजा राम की मुद्दत से यही अरमान

सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया नौजवान कलाकार हमारे ऑल इंडिया का शिवम राजाराम। फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यार जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। कुछ हमारे सुरिनाम देश के कलाकार और कुछ हॉलैंड देश के कलाकार और ये प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाँ शहर से फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। एक और अति सुंदर बयान आप सुनने वाले हैं और लाते हैं हमारे सुरिनाम देश का द बैठ गाना चटनी क्वीन उस्तादिन मोती माला भोला सिंह अपन अंद्र तूर म्यूजिक बाय वन एंड ओनली मैस्त्रो ज्वाला।

Dan shabai shabai shabai shi ustar ka ustar and the lion of bait gana mare den aksher hollandish ka champion singer the great Davinder Singh Siuna ji found in the stani radio pe aap tune hai yaro जोर तोर से साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे सुरिनाम देश हॉलैंडिस का बैठक गाना। अगला गाने वाली एक और महान

गाने वाली है हमारे सूरीनाम देश के IDR 7080 चंद्रवती कंधाई जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे तू जाओ कहां मोरे राजा।

Ekdam top baie gana song uit die jare 80, Arie Mashour Ganewali uit die jare 70, 80, bout hy top sangeres ha mare Suriname, Zamanika Suriname desh mee. शादी करेंगे तो चलो ना शादी करें, ये कह रहा है उस्तादों का उस्ताद किंग ऑफ बैठ गाना द ग्रेट संदीप बदलू जी।

बैठक गाना मैस्ट्रो संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये था यही तक था आज का इस पहला अध्याय हमारे सरनामी संगीत का। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन आप ही का, तो ये रेडियो स्टेशन है, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक कीप लिसनिंग।

रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अब चुन है दप्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बलैस्त्र या इंटरनेट के लहर द्वारा FOUNFM.NL पर यह कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। हमारे तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम है। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत होर, तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, खास फरमाइश से हो, जरूरी खबरें इश्तिहारे, तो जरूर यानी कि आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कम्युनिकेशन बनवा कर, या तो आप इवेंटमेंट ऑर्गेनाइजर हो, ऑर्गामन हो, ऑर्गावुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कम्युनिकेशन बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना हो सकता है कि आपका धंधा चटपट से चलना शुरू कर दे। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, तो आपको आपका जो कमर्शियल है ना, तमाम लोग भी सुनेंगे। किफायत सस्ते दाम, सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, कमर्शियल हो, जरूरी खबरें हो, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। हम तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूं यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। बेलेटेनस कंटोर यूर फनाफ मांडाग टॉट फ्रेडाग ऑप 073-562-2747, या तो आप तार करें 073-262-2077 पर। आप तार करके इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से। दिनों लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें फन ऑफ मांडाग टॉट फ्रेडाग फन नीग टॉट फेव ऑप 073-562-2747, या तो ऑप 073-362-2077 पर। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, और दूसरा अध्याय में तो हमेशा की तरह कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। एक और महान गायक हमारे हॉलैंडेस का जो खबर हुआ था पाकिस्तान में, और कितने बार हमारे सुरीनाम देश में गया, शोस वगैरह दिया, और लोगों को यह महान गायक बेहद पसंद आया। रोजाना सुरीनाम देश में रेडियो पे ये महान सिंगर के गाने लोग चलाते रहते हैं और बेहद पसंद भी करते हैं। मैस्ट्रो नदीम खान मेट सेन लेफन स्लित, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, अ मास्टरपीस ऑफ रीअरेंजमेंट बाय शरीफ वाहिद हुसैन।

0: सुनने वालों, यहाँ जो कि रविवार के शाम है और रविवार के शाम में हम सब रेडियो में उपस्थित है, एक गीत चला रहा हूँ, एक गीत जो यूट्यूब से निकाल करके रखा हुआ हूँ। जॉनी भाई, आपको पता ये किसका आवाज़ है?
1: अभी तो सुना नहीं तो आवाज़ कैसे होगा भैया?
0: अभी सुना नहीं तो आवाज़ कैसे होगा? क्यों ना हम सुनने वालों को भी सुना देते कि ये आवाज़ किसका है। अगर जो कोई जानत हो तो जरूर फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का एक कलाकार

जॉनी भाई भी थोड़ा आज चक्कर में पड़ गए। नहीं, शांता जी का आवाज नहीं है, ये शांता जी की आवाज नहीं है। हमारे कलाकारों में एक कलाकार अभी जो हवाम में काफी दिनों से है और

0: अपना बलान बना लो मुझे बलमा। और जॉनी भाई अभी सोच में पड़ा हुआ है, एक जॉनी भाई संगीतकारों में हॉलैंड में जब देखा जाए तो आप किसको नहीं पहचानते हैं?
1: आवाज से लोग को जो बोलते हैं और गीत में बहुत फर्क होता है,
0: यानी कि आवाज गीत में बदल जाता है।
1: बदल जाता है जब कोई किसी, आपको शायद मालूम होगा भाई ने, ने, भाई संजय, कितने लोग जो तुतलाते हैं,
0: कितने लोग हैं जो तुतलाते हैं,
1: तुतलाते हैं यानी स्तोत्र करते नहीं,
0: स्तोत्र हाँ।
1: लेकिन अब सोचो कि वो ये कैसे गाना गाएगा, लेकिन जो जो गाना गाते हैं तो एक बार नहीं स्तोत्र करते, वो गाना वो इसने चलाते। देख लिया जाए एक मशहूर कलाकार जो हमारे सूरीनाम को जो यहाँ रहते हैं, हेंगोपाल, नॉर्मल हेंगोपाल जब आपसे बातचीत करेगा तो वो स्तोत्र करते हैं, लेकिन जब वो किशोर कुमार के गाना गाते या और भी गाना गाते वो कभी एक बार स्तोत्र नहीं करते और दूसरा आवाज़ से गाते। इसीलिए गाना पे आवाज़ बदल जाता है यार।
0: पर सुनने वालों आप भी सुनिए, ये किसका आवाज़ है?

0: अपना बना लो मेरा बलमा। और ये सुंदर सा गीत जो लिखा गया कि अपना बना लो मोरी बलमा, एक और गीत उसी का चलाता है, क्यों ना शायद अभी आ जाए जॉनी भाई आपके।
1: नहीं आएगा
0: नहीं, शायद धुन कुछ और होगा, देखते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, भाई जॉनी भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो इसे बता देता हूँ जॉनी भाई कि हमारे गायकों में से मशहूर गायक जो सिरुनामक है, जो सबसे ज़्यादा गाना गाए से उनका भाई, बहुत सा गाना गाए हैं। अगर जब नाम चैतू कह ले तो उनकर बहन, कितने बहनों उसकर गीत का गाना गाए हैं।

0: सत्या चैतु, सत्या त्रिबेनी चैतु यूट्यूब से निकाला गया ये गीत और उनकर गाए हुए गीत है। उन्होंने बड़ा मंदिरों में और बहुत सा जगह गाते रहते हैं और उन्हीं का आवाज़ में ये सुंदर गीत है। पर बिल्कुल जैसे उनसे बात करेंगे आपको तो ये आवाज़ नहीं है।
1: लेकिन हर एक लोग जो गीत को गाते हैं भाई संजय, तो उसका आवाज़ बदल जाता है।
0: आवाज़ बदल जाता है,
1: वो कुछ और आवाज़ जो बात करते हैं वो आवाज़ और गीत के आवाज़ वो दो हो जाते हैं। आप भी तो कराओगे करते हैं।
0: अब कुछ कुछ वहाँ भी कोशिश करल जा सीखे के
1: भाई क्या ये फरकलाप तो भैया संजय भी कराओगे गीत गाते हैं तो उसका आवाज़ भी वहाँ पर कुछ और है। मैं कुछ बताओ भाई ने, ने, संजय आपकी रामलीला के बारे में कैसे बातचीत है?
0: भाई रामलीला तो यहाँ हॉलैंड में बिल्कुल बंद हो गया था ना, ये लास्ट यार लास्ट ये अफलोप दिशानियम तो हो ही नहीं कुछ, और अभी यहाँ फिर स्टार्ट किया गया है। और जैसे कि सूरीनाम में अभी भी सूरीनाम भी कम हो गया है, पर भारत में जो नवरात्रि से पहले तो जनवरी में शुरू हो जाता है रिहर्सल करने लगते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पहला नवरात्रि में जो मार्च अप्रैल में होता है तो वहाँ पर सभन अपना नवरोज के लिए अपने हर एक स्थानों पे दिल्ली में हर एक स्थान पे और जा कर के रामलीला होता है। और ख़ास करके त्वेदा रामलीला जो जहाँ पर काबुल है दशहरा होता है, जहाँ पर रावण का और पुतला बना करके जलाया जाता है, तो वो तो हॉलैंड में वो 9 दिन तक यहाँ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर अगर हम लोग सोचेंगे कि मुश्किल हो गया है तो मैं इस पे नहीं मानता हूँ, मैं इस पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम कुछ लोग भी इस समय सुन रहे हैं हम लोग के साथ। और मैं ये आशा रखता हूँ कि जिस देश में जॉनी सुरजबाली है वहाँ तो रामलीला ही करवाई के रखेगा
1: पंडित साथ है लेकिन भाई संजय ने एक बात और है, सूरीनाम में तो चलते हैं नवरोज, चलते हैं वहाँ रामलीला, और भारत में कैसे है वहाँ?
0: भारत में हर देखो अब जहाँ मेरा परिवार रहते हैं ना दिल्ली में, तो वहाँ पर अब दशहरा वाला जो दूसरा नवरात्रि है वहाँ पर तो ये जूनी मई में गर्मी होता है, तो जूनी में गर्मी अभी होता है और जुलाई में तो बरसात आ जाता है। जब बरसात आ जाता है तो गर्मी जो कट करके 40 से ऊपर रहता है और हो जाता है 32-35, धीरे धीरे अगस्त तक गर्मी और थोड़ा 30 तक पहुंच जाता है, और जुलाई के बाद में वहाँ रिहर्सल शुरू हो जाता है, सब अपना ओपनिंग शुरू करने लगते हैं। और ख़ास करके जहाँ हमारे परिवार रहते हैं वहाँ छत पे,
1: और छत पे होता है
0: हाँ दुस्सैन
1: होता है
0: हाँ डाक पे, और लोग आ करके रिहर्सल करते हैं खूब। वहाँ मैंने बैठा था और मैं सुन रहा था, बातचीत हो रहा कि भीड़ भाड़, वैसे तो उतना भीड़ भाड़ नहीं, तो इस बात को पता चला कि वहाँ आप रामलीला का रिया जो हर साल करते हैं फिर भी हाँ। और ये है कि एक ही आदमी नहीं, उसमें वो है कि उसमें है कि दत्तर दो लोपेस जो इस साल हाँ इस साल नहीं खेले, उसे मौका मिला तो अगले साल मिलेगा, और उसमें एक दूसरे को जोश देते हैं।
1: लेकिन वहाँ पर सब कहाँ खेलते हैं?
0: यहाँ वहाँ जो अपना परिवार है, क्योंकि वहाँ दिल्ली में एक रामलीला मैदान कहते हैं अनहेल ओप प्लेक, जहाँ पर यहाँ के लोग भी जा कर के वहाँ पर सम्मान को प्राप्त किए हैं कि यहाँ जो भाई बालादीन लोग जो नाटक आदि खेले हैं और वहाँ पर जा कर के क्या कहते हैं सम्मान को प्राप्ति किए वहाँ पर, सम्मान खूब सम्मान किए है हॉलैंड से, क्योंकि भारत ये चाहते हैं कि हमारा सभ्यता संस्कृति और संस्कार ये बढ़ते जाए। अब देखा जाए मोदी जी आए हॉलैंड में तो सब बात सबको नहीं पता है, पर कुछ बातें हैं कि जो हम लोग सुन लेला कि हम लोग के हिंदी स्कूल जो यहाँ पर है 5 सनातन धर्म स्कूल और फाहोन के लेकर के 6 और शोन और फाहोन भी, तो वो इतना प्रशंसा हो रहा कि हॉलैंड में हो करके और ये सब कार्य को करते हैं, इट्स ऑन ट्रोथ्स द साइड हमारे हिंदुत्व के लिए
1: क्लोथ,
0: और वो विष्णु स्कूल के और प्रस्थान डाले, पर कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल होने के कारण मीडिया में ना आवे सब कुछ। और इसी प्रकार से अभी जब ग्वेलनी हेलमाल अफवाई का फन जो प्रश्न रखे आपकी, हम रामलीला क्या करते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग रामलीला खेलने वाले हैं जो अगले 5 जून आ रहा है, तो कोनिंग लकस हॉबर्ग में यहाँ हम लोग को अवसर मिला है, तो वहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम होगा, तो ऐसा है कि वहाँ कुछ कार्यक्रम एर्स्ट खदेलता जो खराता से, तो इधर खदेलता में जो जिसके खाने पीने के साथ तो कुछ एंट्री भी लगेगा
1: जरूर लगेगा,
0: पर ख़ास करके हम लोग के अच्छे संबिशौंद रहा है दच दत हम लोग की हम अपना कार्यक्रम कौन निकला का स्वाओ बेरख में देख सकते हैं, तो खूब मन तन से काम किया जाए, और हमारे जो कलाकार है फाहोन स्कूल से जुड़े हुए वो लोग भी दिखाएंगे कि उसमें रामायण बहुत बड़का महासागर एक ग्रंथ है जो हम लोग के कितने ग्रंथ है पर महासागर है, और उसमें से एक छोटा सा झलक हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे।
1: अच्छा भाई, एक और सवाल है, आप तो यानी कि बखलाइदर हुए और सब करते हैं, मुझे एक डायलॉग सुना दो, आप तो सबके डायलॉग जानते हैं, सबके एक जबरदस्त डायलॉग आपके जो रामायण में है या मतलब कि रामलीला में है, आप हमें और हमारे जनता तक ही सुना दो।
0: उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दिलचस्प लगता है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वो टुकड़ा रामलीला का जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि राम और सीता का धनुष यज्ञ से उनका और कैसे सीता को प्राप्त किया, उसमें ये संदेश रखा जाता है कि हमारे बच्चों ओंस केंद्र वे इतफाक ओंस द फरहाल फन ओंसनी और वे खान फाक साम वो उन्हें क्या कहते हैं बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद में हम चाहते हैं कि अपने बच्चा का मुड़न संस्कार जरूर कराए, पर कुछ चीज है जो हमारे धर्म से, जैसे कि भी हमने कहा कि सभ्यता संस्कृति और संस्कार, इन तीनों चीजों पर पहले हमारे उनसे दखीन राजसी सखमार जो भारत को अख्तिंद्रियन सैफन तक में छोड़ करके और भारत से गए सूरीनाम, तो सूरीनाम में जा करके संस्कार को पकड़े रहे पहले, और जा करके विवाह भी होते थे एक दूसरे के साथ, तो जिसे हम जानते ब्रह्म विवाह से, और वत ओंस जो हम लोग का संदेश है ये धनुष यज्ञ से, कि संदेश ये हम लोग रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों हमारे कहानी जाने, अपना जो फ्रिंट या फ्रिंदेन को जब वो वनेरत सो फेर इस दन बोव्यस किस्त फनो हमारा विवाह होई और हमारा विवाह किस प्रकार से होई, ब्रह्म विवाह होने से लव कुश जैसा पुत्र को जन्म होता है, और उसी कारण सेटफेल अख्तर है मुद्दीत खान खलाइक ऑफ द नाम में हमारा धर्म भी रहेगा, धर्म रहेगा इस कारण कि हमारा धर्म में हम लोग के कोई भी कार हम लोग के जो कुछ संस्कार है 16 संस्कार है, तो 16 संस्कार में सब देखा जाए कि 4 को पे हम लोग ज्यादा ध्यान देला, पहला वाला है जो मुड़न संस्कार, जबकि अभी तक हॉलैंड में हम लोगन गोरे लोग जो गर्भधान संस्कार ये सब कराते हैं
1: कराते रहे
0: अभी तक।
1: अच्छा अच्छा
0: वही माँ कनत मई, पर हम लोग हिंदुस्तानी उस पर ध्यान नहीं देते
1: नहीं।
0: और गर्भधान संस्कार उसके बाद में और भी करण संस्कार सब कान छेदाई वाला संस्कार सब हुए हैं, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार और लास्ट वाला संस्कार हुए हैं जब हमारा वो हाँ, पर फाक वो वाला जाना वाला तब बड़ा देर हो जाए जब हम अपना जीवन में सोचते हैं हम जीवन को समझ लिए, पर जब समझने को आने लगता है तब जाने का वक्त हो जाता
1: है। करना है हाँ,
0: तो दौरो खोजो पंडित।
1: लेकिन और आप एक डायलॉग सुनाते हैं,
0: अब मैं अब आप वही में से हम घुमा रहे थे आपको, पर फिर आप हमें लेकर उसी ओर ले जा रहे हैं। उसमें से एक डायलॉग नहीं, एक एक, एक एक एक खदेलते जो हमें बहुत पसंद है।
1: अच्छा सुना दो।
0: जहां पर परशुराम जी जो जा करके जब धनुष को टूट जाता है तो वो अंदर आते हैं बड़ा क्रोधित होकर के, मैं क्रोधी हूँ परशुराम के आवास, और परशुराम के आवास में आते हैं, और आप नाटक न रामलीला वाला आदमी हो
1: नहीं, नहीं।
0: आप वो करवाना चाहते हो, मुझ में वो है ही नहीं,
1: नहीं
0: पर परशुराम बड़ा क्रोधित होकर के आता कि किसने ये धनुष को, किसने ये दुशासन किया है, ये धनुष जो शिव का धनुष है किसने ये तोड़ा है। तो उसमें बड़ा टड़क भड़क दिखाते हैं राजा जनक जी जो अपने ओर से कहते कि ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी है, और लेकर के अयोध्या सुपुत्र राम लक्ष्मण को लेकर के यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं।
1: तो लक्ष्मण भी कुछ बोला था,
0: तो लक्ष्मण भी
1: तो
0: अपना
1: कौन से डायलॉग बोला था?
0: लक्ष्मण कहते कि कि बड़ा आप में बचपन में तो मैंने ऐसा ऐसा कितने सारे और धनुष को तोड़ दिए, तब आप नहीं आए थे तो आज क्यों आए। और इस प्रकार से छोटा छोटा बातें हैं, पर सबसे मूल्य हमें सबसे अच्छा लगता है इसमें से, जब ब्रह्म ऋषि जी जो उसे राम को आदेश देते हैं कि जाओ और भगवान परशुराम को प्रणाम करो, तो राम जा करके भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं, तब परशुराम जी कहते हैं कि अरे वाह, मीठी मीठी बातों करके और मुझे भी अपमान भी कर रहे हैं। तो ये अब मैं भी थोड़ा गर्म होने लगा
1: हाँ।
0: पर काफी इतना
1: बहुत धन्यवाद
0: कि संदेश बड़ा अच्छा लगता है वो।
1: अच्छा, जरूर, जरूर।
0: और देखने वाला चीज है,
1: देखो जब रामायण चलते या महाभारत चलता है जो लोग जानते हैं और उसके बारे में आप बताते हैं तो सब
0: हाँ
1: रामायणर होता है,
0: तुरख ब्लिक
1: तुरख तुरख आते वहाँ ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था। कारण की जो इतिहास है पंडित जी भाई संजय, इतिहास लोग बदल नहीं सकता।
0: हाँ, पर ये हमारे कथाएं जो है ना
1: वो बदला नहीं सकता।
0: हाँ, पर वो ऐतिहासिक रकम से शायद लिखा हुआ है पर इतिहास नहीं है, अतः जीती जागता कथा
1: कथा और उसको और बदल नहीं पाएगा।
0: हाँ, उसमें बदलाव नहीं आएगा कभी।
1: देखिए एक नाटक जो हम सब लिखते हैं या एक फिल्म बनाते हैं या एक गीत को हम गाते हैं भजन छोड़ाकर, तो उसमें आप कहीं पे थोड़ा लहसुन डाल देते हैं, कहीं प्याज डाल देते हैं, कहीं मसाला डाल देते हैं, कहीं मिर्चा डाल सकते हैं, लेकिन जो इतिहास है जो हमारा वेद के है या कोई भजन की गीत है उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो है आपको वही बताना पड़ेगा।
0: शायद धुन उसमें कुछ बदल सकता है, आवाज किसी का बदल सकता है, पर संदेश वही,
1: संदेश आप बदल नहीं सकते हैं। हम सब जो कीर्तन भजन करते हैं तो एक एक भजन भजन होता है। बीते हुए दिनों में हमने गए थे रुद्र मंदिर में,
0: रुद्रधाम
1: में, वहाँ पर हमने शिव चालीसा को गाए। जब शिव चालीसा हमने गाए तो उसके बाद में अब वहाँ कथा होने लगा तो एक स्वामी जी व्यास पर बैठे थे तो वही शिव चालीसा के कुछ कथाओं बताने लगा। तो जो जो वोर्त स्वामी जी बताने लगा वो सब वोर्त वो शिव चालीसा में मुझे मिला कि देखो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। कारण कि हर एक भजन में, हर एक गीत में जो जो जो इतिहास का है वो सब में बहुत वजन है भाई। और जो नहीं समझेंगे तो सोते तो होने
0: गीत है,
1: ये गीत है,
0: पर उसमें से जो गहराई है, जो उसमें क्या कहते उसमें से जो निकालते हो, देखो कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु बिना तो कुछ नहीं,
1: कुछ नहीं।
0: तो गुरु जब संदेश उसी में से इतना गहराई निकाल दी एक ही, अब जैसे आप कहे कि शिव चालीसा, शिव चालीसा में से एक ओर से संत, क्योंकि स्वामी ऐसा ही नहीं बन जाता, टीका ऐसा ही नहीं लग जाता,
1: नहीं, नहीं।
0: जरूर कुछ है, कुछ लोग है जो ऐसा ऐसा आदमी, पर उसको हम नहीं जाएंगे, पर संत मुनियों जो अपना दृष्टि डालते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा सुंदरता मिलता
1: है,
0: बड़ा
1: बहुत गहराई है, बहुत
0: आनंद उसी से हम
1: बहुत बहुत बहुत। आप बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और उसका अंत नहीं भाई,
0: ना ना।
1: अब हनुमान चालीसा जब हम सब गाते हैं भजन कीर्तन के, तो हनुमान चालीसा में हर एक वर्ड जो है हनुमान जी के बहुत मूल्य है कि वो क्या क्या किया है, छोटे से लेकर जन्म से लेकर कहाँ तक वो गया, उसका 40 लीला उसमें बताए गए हैं, उसके गहराई बहुत। कितने लोग जो हनुमान चालीसा गाते हैं ऐसे थूक जाते हैं, लेकिन उसके गहराई में कभी जाओ तो देखो उसमें क्या क्या हनुमान जी किया,
0: वर्णन किया,
1: वर्णन किया। अच्छा ठीक है, तो कुछ हो गया है हम सबका आज रामायण के बारे में। आप बताओ रामायण तो आप, रामलीला तो आप करते हैं, और आगे के प्रोग्राम क्या करेंगे, उसके वारंटी तो होना चाहिए ना।
0: नहीं, बात ये है कि देखो भाई, अब शायद ये बात लाइव हम लोग को करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोस्तरार्थ से भी जो सुन रहे हैं, और इस पे जरूर मैं ये धरना चाहता हूँ कि कहीं भी जाओ रामलीला का बात होए तो उसमें से सबसे पहले होए है कि जॉनी के का हाल है, जॉनी का कर रहे हैं शायद। तब इसमें अब ये सवाल ही आप किए तो, और ये मत समझना कि ये हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, पर ये मेरा बात नहीं है। अब पिछले शुक्रवार को हम लोग यहाँ उपस्थित थे, तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि हम और हैन जो हमारा टेक्नीशियन है, बार बार एक ही ओर आपके घींच के ले जा रहे थे, और आप हम लोग से छोड़ छोड़ करके दूसरा ओर निकल रहे थे, पर नहीं हमारे
1: बात नहीं करूं, घुमा फिरा कर तो ही के लपेट। संजय भाई बताओ फाहुन क्या क्या करते हैं इस समय?
0: फाहुन रेडियो के बात बोल रहे हैं या फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो? इस समय जो देखो आप, सुबह से आज रेडियो लगे हुए हैं, फाहुन जो हमारे कोलेई खास, उसमें से मुझे कभी कभी कुछ वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को सबसे यंगस्टर कहलाता हूँ, तो उसे सबसे अच्छा लगता है बस वही बार। पर हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और देखो फाहुन रेडियो का करो का ग्रुप जो है अभी एक बार लाइफ नहीं आया, इस पे काम करना है, और सब इंस्ट्रूमेंट जो हो चुके हैं स्टूडियो के जो करो का लाइफ लाना है, पर हमारे जो सभापति है करो का ग्रुप का भाई गंगा जी, जो रविवार को अभी आने वाले मेरे ख्याल से, क्योंकि आज सुरेन जी जो
1: आज
0: हाँ तो अभी आने वाले, पर उनके ओर से मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे कि कौन कौन आ रहा है, और फुल हर बार फुल होते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को यहाँ हमारे समय पे जो हमारा ज्योति का प्रकाश के समय पे स्टूडियो बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा और स्टूडियो में हमारे सभी को कलाकारों जो करों को करते हैं। दूसरा बात ये है कि हमारे देखो हम लोग में ये है, जितना हमारे कोलेखा से सब कुछ न कुछ और करते हैं हम लोग। कैसे बोले, दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक इनर लोग होते हैं जो सिर्फ अपना परिवार, अपना घर में अपना सब कुछ बढ़िया से चलाते हैं, जाते हैं नौकरी पे, वो फिर वापस आकर के अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे को साइकिल में हवा भरते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने सिर्फ उसके लिए जीते। पर ये फाहन वाला को आउटर कहते हैं, ये अपने लिए नहीं जीते, ये जीते हैं औरों के लिए, उसमें मजा लेते हैं उसमें। अब देखा जाए जॉनी सुरजवाली के जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, पर खोलांत में कई मंदिर में जो भजन गाते हैं, ना कि भजन सिर्फ कहां खरौता अक्तिफिताइत होते हैं, तो आप जब वहां ना हो तो थोड़ा अधूरा पड़ जाए। अब देखा जाए अमारा में पिछले साल जो 8000 लोगों, 8000 हिंदुस्तानी जो वहां पर आए, और उसमें आपके कार्यक्रम कितना सुंदर रहा
1: भैया, अरुण
0: ब्रिज मोहन का कार्यक्रम रहा,
1: कार्यक्रम रहा, सब कोई मिलजुल के किया। आप भी बहुत काम किया है।
0: नहीं, हम लोग भी अपना काम करते, पर कहते कहने की हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ में लगा,
1: अपने अपने अपने अपने काम सब किया है। और ऊपर में जो मंदिर आप लोग बनाए थे अमारा में, वो तो हमने देख के दंग हो गया भाई, वो जो उतना बड़ा शिवलिंग थे।
0: हाँ ना,
1: आप सौक पहिर के सौक में कोसू में और पूरा अमारा आपने चल कर और छान दिए।
0: अरे बस साथे बस,
1: साथ
0: मस्ती मस्ती होता है,
1: साथे साथ शंकर भगवान के विवाह के भी कार्य आप बना दिए।
0: हाँ, बस हो जाता है,
1: आप बहुत महान है भाई।
0: नहीं नहीं, हमें नहीं, पर जो होना है देखा जाए। पिछले साल हम लोगों ने, आप भी थे वहाँ, कि दिवाली का कार्यक्रम पॉल क्रिको लॉन पे, भाई हेमंत लक्ष्मण का कार्यक्रम, तो उन्होंने भी देखा जाए कि खूब मन तन से कितना बढ़िया कार्यक्रम बनाए, और जा करके वहाँ हम लोग भी सहयोग दिए खूब मन तन से। और ऐसे हम लोग के हिंदू का कार्यक्रम कहीं ना कहीं देश में पिछले साल, देखो आप तो उस समय सूरीनाम में थे, पर सभी ये आशा रखते थे कि आप यहाँ होते। दमेरन में मूर्ति स्थापना हुआ, 5 रोज का यज्ञ,
1: जानते हैं उस समय हम सूरीनाम में रहे, वहाँ से हमने लाइव देखा आपको।
0: हाँ,
1: और मंदिर को कैसे वहाँ कारोबार होता है,
0: तो देखो हम लोग ने
1: कितने रोज के प्रोग्राम वहाँ, 4-5 रोज चला था ना,
0: 5 रोज का यज्ञ था।
1: यज्ञ वहाँ में बुलाए थे भैया हैंक फोर्सितर, वो चाहते थे कि जो दिन स्थापना है वहाँ पर हमें कीर्तन करी, मैं क्या करूँ, ये दो जहाँ तो नहीं जा सकते भाई, लेकिन अब आने वाला अब साल में हम सब लोग को बता देते हैं कि रेडियो फाहुन के फाहुन, रेडियो फाहुन जो रेडियो चलते हैं, हम सब अबका रूह का खुर बना लिए हैं, और अब हम सब बनाएंगे चौथा ग्रुप टीम फाहुन का। तो आने वाला साल में होगा भाई संजय के साथ में, हो सकते शायद कृष्ण मंदिर के साथ में।
0: नहीं, वो बात भी हो गया, आज हुआ सभापति से कृष्ण मंदिर से, मैंने उसके कानों में डाल दिया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि भाई बाबू जो सभापति है वहाँ का, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम तो सहमत है, और हम वो तो और भी कुछ करना चाहते हैं,
1: ठीक है,
0: पर अभी उसके बारे में बातचीत होगा, क्योंकि
1: अभी बहुत फ्रूक।
0: हाँ,
1: तो अब आने वाला साल में, बीते हुए साल में तो हम सूरीनाम देश में थे, यानी इस साल में तो हम सूरीनाम में थे, तो यही आशा है जब भगवान चाहेगा तंदुरुस्ती ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो अब की होली हम जोर तोर से मनाएंगे, और चौथा ग्रुप भी हम सब सिद्धि करेंगे, आप भी हैं और गंगा भैया है फाहौन चौथा ग्रुप, साथ ही साथ होलका भी जलेंगे, और जनता को अल्फाज कान में हमने डाल दिया कि तैयार रखना।
0: हाँ, पर ठंडा होगा ना।
1: ओ यार, बोले जहाँ बसे वहीं सुंदर देशु,
0: और मिर्च और यास पहन लो तो बस
1: सब हो जाएगा।
0: तो कई दो में जलावल जाइए खूब मन तन से। और इसमें थोड़ा से मैं और डाल देना चाहता हूँ कि मेर दान 40 यार से वो फॉरगिविंग को मांगा जाता है और मिलता है भी सरकार. अभी पिछले साल जो फॉरगिविंग हमने मांग किए तो थोड़ा देर से हो गया था, तो जो फॉरगिविंग देते हैं तो वो कहा कि ये तो हर साल ना मांगता है. कहने के तात्पर्य ये वो जानते हैं कि ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है. अभी हम लोग चला रहे तो अब से अगले साल कुछ ज़्यादा तादाद में वहाँ पर ठंडा में खड़ा होकर के और कुछ व्यवस्था करेंगे कैक डर में. और ये जो भाई महेंद्र गुदर के रखा हुआ उनकर मामा लोग के, शुरू में तो ये कार्यक्रम होता था मालीफेल्ड पे, तो फिर उसके बाद में दिया गया कैकडोइन और तभी से 40 साल से ज़्यादा हो गया कैकडोइन का जो कार्यक्रम होता है. तो अगले साल खूब जोर
1: हो सकता
0: है, टेंट तो रखना पड़ेगा क्योंकि टेंट का भी व्यवस्था करना पड़ेगा.
1: तो देखो क्या होगा और सोचते हैं कि अच्छा चलेंगे. और आप भी अब देखो मंदिर में भी बतिया चुका है और देखो नवंबर से हम सब शुरू करेंगे यानी कि ओपनिंग.
0: पर उस और जरूर वो तो नवंबर से शुरू करेंगे.
1: नहीं, नवंबर से शुरू करेंगे.
0: पर आप ये जवाब नहीं देते जॉनी भाई कि आप रामलीला के क्या करा रहे हैं.
1: वो आपके चित्र पंडित जी.
0: नहीं नहीं, हम लोग तो काम करना चाहता है क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जहां पर आप जो उसमें हाथ धर देंगे तो वो हो जाएगा.
1: भाई संजय, ये रामलीला जो है जरूर चलाना चाहिए लेकिन काम बहुत बड़ा है, उसमें एक दो आदमी का संयोग से नहीं हो पाएगा. अगर ये बड़ा हम करना चाहते हैं जैसे सूरीनाम में लोग करते हैं, फेल्थ पे करना चाहते हैं या कोई बड़ा साल में करना चाहते हैं बड़का हॉल में, तब ये बात जानो कि पूरा हॉलैंड के लोग आएंगे, ओनाक्सी सिर्फ दनहाक के लोग आएंगे. आप करते हैं आपको थिएटर भर जाते हैं लेकिन जब और बड़ाम करेंगे दो हफ्ता चलेंगे सुख शनिचर रतवार सुख शनिचर रतवार और हर उम्र में करना पड़ेगा. कारण कि जब बाहर आप रामलीला करेंगे जैसे सूरीनाम में या भारत देश में लोग करते हैं तो गर्मी चाहिए, फैल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डेकोरासी चाहिए, काम बड़ा. ओम दिल अलमाल तेरे अलीर मुत खुद स्टीफ और खालिस्तान से पैस्तान, यानी कि आप जानते हैं काम बांटना पड़ेगा. काम नहीं बांटेगा तो काम नहीं होगा. अल अफदीलिंग मुचिया फरदील, कि तुम्हारा क्षेत्र ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा है. तो 10 लोग को आप जो काम बांट देना

0: जनता के आशीर्वाद है, लोग चाहते तो हो सकता है, लेकिन इसका औरखानिशासी जबर होना चाहिए।
1: जरूर औरखानिशासी जबर होना चाहिए, बगैर औरखानिशासी कुछ नहीं हो पाता। पर छोटा सा, छोटे मुंह बड़े बात, छोटा सा एक ही व्यक्ति और शुरू किया तो 8,000 लोग को अमार में धल दिया। तो कहने के तात्पर्य यह है, हम लोग का अक्ति फिताई था जो मिलन होता है साल में सैन इन द मोय पेरियोड, और जरूर शायद हम लोग जो नवरात्रि होना चाहिए, रामलीला होना चाहिए दूसरा नवरात्रि से पहले, पर वो ठंडा समय है पब्लिक, क्योंकि देखा जाए कि ब्रसल, बेल्जियम, इंग्लैंड, डॉयचलैंड, यहाँ भी हमारे हिंदुत्व है
0: बहुत,
1: एम्बेसी से जुड़े हुए हैं। और अगर जो हम लोगों ने वो मोई प्रोखामा लेकर एम्बेसी के पास जाए तो वो लोग हम लोग के मदद करने के लिए तैयार हैं।
0: ठीक है,
1: पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हनुमान बनकर सब पार करा ले। अब वो मैं हॉलैंड में तो नहीं देख रहा हूँ कोई और के
0: ये बात है, ये भाई संजय बहुत लोग है, आप भी तो है, कितने कितने प्रोग्राम
1: नहीं करके दे चाहिए। देखो कहने के तात्पर्य यह है, हम लोग यहाँ बैठ करके बात कर लेते हैं, पर बात करने से नहीं, ये मुद इक्वालिटी है भाई। ये जैसे कि अभी आपने कहा रिसफेल वर्क, और चलो 9 दिन के ना सही, हम तो 45 मिनट वाला, और वो ही 45 मिनट वाला हम लोग के चाहिए 5 तक मिनट में अफरौंद करेंगे, मैंने बोला 5 तक, 10 तक मिनट में, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम बनाते हैं गोरे लोग तो वो लोग अपना प्लानिंग बहुत स्ट्रक पकड़ते हैं। हमारा प्रोग्राम जो 45 मिनट के है तो उसे हमें 30 मिनट में प्रेजेंटेयर करना है, मां प्रभाव भी पड़ना चाहिए ना, प्रभाव हम जल्दी जल्दी आकर के काम करेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा,
0: आदमी समझ नहीं पाएंगे
1: कुछ, और प्रभाव होना, प्रभाव तो डालना है, वही तो संदेश है हमारा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर हमें उसका मतलब नहीं वो हमें समय नहीं दे रहा तो हम ना करूं, हमें तो आगे बढ़ना है, क्योंकि हम है आज है, पता नहीं कब रहेंगे, करना
0: कल
1: तो
0: किसने देखा,
1: कल किसने
0: है?
1: देखा है
0: भाई जने, क्वाट फोर हो गया है 7 बजने में,
1: क्वाट फोर हो गया है 7 बजने
0: में, एक घंटा हम लोग 3 बजे आया, कुछ लोग कुछ सुना दे, कुछ
1: एक गीत चला देते हैं।

मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों सुनने वालों, अभी हम भाई जॉनी जी के साथ कुछ संदेश को रखे और देखा जाए कि रामलीला जो हॉलैंड में होने वाले है और अत्यंत सुंदर है जो कि हम लोग कोशिश करने को जा रहे हैं। कोशिश भी ये है कि फाहुन भी अपने ओर से जो रामलीला शायद 9 दिन ना सही पर 2-3 दिन के लिए भी कुछ और लिखा जाए और हम लोग भी प्रस्तुत कर सके। और भी गीतों जो हमारे प्लेयर पे रखे हुए हैं, देखते हैं कौन सा गीत इस बार हमारे कंप्यूटर ने ट्यून करके रखे हैं।

0: सुनो वालो, और यहाँ पर हमारे जो कोलेखा साथी सीतू दत्वा तो चमके है भाई यूसुफ जी, जो अपना कार्यक्रम के लिए लोगन भाई तनी से 8 बजे से आप लोग के कार्यक्रम हम लोग के थोड़ा अवसर छोड़ दे वाल करो, कुछ सुना दे अपने लॉयसरास के कि अभी क्या लेकर आने वाले हैं आप सब।
1: जैसे सबको के मालूम है कि हर सोमवार के हम लोग 8 बजे से 10 बजे रात तक गीत गसल कर रहा हम भाई गंगा।
0: और सोमवार के हिंदुस्तानी में कैसे बोला जाए?
1: रविवार।
0: दोस्तों सुनने वालों, हम लोग एक दूसरे के देख लेते हैं तो बस इतना मगन हो जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं। अभी कार्यक्रम जो कि ओबेल प्रोग्राम होते हैं ना आप लोग का, ओबेल प्रोग्राम जो, हाँ ओबेल प्रोग्राम होगा, और भाई यूसुफ जी जो आ गया है अभी तैयारी में लगे हुए हैं, मिक्रोफोन लेने वाले हैं।

0: भाई यूसुफ जी, हम लोग अपना कार्यक्रम के और जो हम लोग के खदेलता है, जो हम लोग कुछ कह रहे थे, यहाँ से समाप्ति के सीमा पे आकर पहुँचे हैं। पर आज रात्रि में कोई ख़ास गीत है, हमने देखा एक पर्चा कि आजकल अमिताभ बच्चन का गीत को ज़्यादा चलाया जाता है, ऐसा क्यों? पर तेमा उसे धरा गया,
1: हम लोग
0: ओ खून लगातार रहेगा,
1: सब कोई बैल करी अनौ सो चॉइस हम लोग के है और आदमी लोग बैल करे, हम लोग सब के गाना ड्राई कर देगा
0: ऐसा। तो दोस्तों सुनने वालों, यहां तक हमने आपके साथ सहयोग दिए, आशा यह है कि आप सुनते रहना। यूसुफ जी और गंगा जी का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाले है। सभी को नमस्कार, जय गोविंद।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज किले इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों का सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो 8 का वक्त है। जी हाँ, 8 का वक्त है, आखिर क्लॉक स्लॉक। अब ये कार्यक्रम देनाश से प्रसारित हो रहा है। जो बीमार लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ की प्रार्थना है। जिनके घर में कोई शादी विवाह, कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे हमारे सहयोगियों द्वारा। यहाँ से मैं हूँ आपका सेवक गंगा और रहूँगा करीबन 10 बजे तक। मेरा साथ दे रहा है भैया यूसुफ, जो मेरे सामने बैठा हुआ है। अभी उनकी आवाज़ आप सुनोगे ज़रूर। सोंदा खाफत है यानि रविवार है और 31 तारीख मई है। ये महीना फिर गया। 12 बजे रात्रि से 1 जून हो जाएगा। आप सबका हृदय से स्वागत है। उम्मीद है कार्यक्रम आप सुन रहे होंगे, और नहीं सुन रहे होंगे तो अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से बता देना परिवार से कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस वक्त तत्पर है और भैया यूसुफ भी यहाँ बैठा हुआ है और मैं भी बैठा हुआ हूँ। और तो आप चून कर सकते हैं www.faunfm.nl पर, या तो वीफी रेडियो या तो इंटरनेट रेडियो पर। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आपका हृदय से स्वागत है। अपने तरफ से, यूसुफ की तरफ से, अपने सहयोगियों के सहयोगियों की तरफ से, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की डायरेक्सी की तरफ से। तो गीत गजल के कार्यक्रम यहाँ से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तार का नंबर अभी से आपको दे देते हैं 9 से 5 तक 3 5 7 तक 2 2 तक 7 4 तक, या तो 9 से 5 तक 3 2 7 तक 2 तक 7 तक। तार ढूंढ लीजिए, एक पेन ले लीजिए, कागज पर लिख डालिए और गीत गजल के कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि कभी कभी होता है लोग शुरू में तार नहीं करते हैं, लेकिन जब 20 मिनट रह जाता कार्यक्रम समाप्त करने में तो बहुत सारे लोग तार करते हैं, तो दिक्कत होती है, समय नहीं रह जाता है। तो आपसे निवेदन है, अगर आप तार करना चाहें तो अभी से कर सकते हैं। एक तार इस वक्त बसात है और दूसरा अभी फ्री है, तो आप तार कीजिए। इस वक्त बसात है 2 2 तक 7 फेर तक, और खाली है 2 तक 7 सेकंड। तो लीजिए, पहला सिलेक्शन मैं पेश कर रहा हूँ। इस तरह से लता जी आपको सुना रही है फिल्म पतिता में से निकली द्री फेफ तक का ये गीत है। बहुत पुरानी नहीं है और शायद आपको साल पुराना लग रहा होगा। तो लता जी की आवाज़ का ये गीत आप सुनिए, क्योंकि इस गीत से आप अवश्य वाकिफ होंगे।

0: लता जी आपको सुनाए हैं सोंदाख इन अंदर तक मार्त के कार्यक्रम, सॉरी मई इन अंदर तक मई के कार्यक्रम में। और ये गीत चलाने के दिन ड्रीम फेफ्थ का ये गीत फिल्म पतिता में से निकाले हैं और हम आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा शंकर जय किशन के साज पर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी नहीं भैया यूसुफ अपनी आवाज़ पहले सुना दे भाई। अच्छा भैया यूसुफ अपनी आवाज़ सुना दो, कैसे समाचार हैं?
1: बस सब चीज़ ठीक ठाक है भाई।
0: कौन दिन तो बड़ा बरखा बरसा ही ले यार, कैसे बड़ा जबर बरखा, हमके डर लगता रहा ताके बार वहाँ के कितना जोर बरसे, खाली सुनत नहीं। हाँ बहुत जोर से बरसल, गर्जल है टड़पल है जैसे बाघ टड़पल है मेरे ब्यूट में।
1: ये भाव गर्जत रहा यहाँ
0: ना,
1: ये मंत्र भागी घर में।
0: हाँ नहीं
1: नहीं इधर ही खुरुता एंड मैं से नॉर्मल्स बेलियली मसाल वन वो हैव अ बैलेंस नो दफ्ती एम्पायर बेल बेल मास दर्फन नहीं तो बेल व्हाट द रेंज इज वेट टेक्निक बेल एंड देन
0: सुने मैं
1: ना
0: मांगे बैल कर दुई शॉट मार के बैल कर
1: हम खूब कह रहा बैल करे तनी एक आध गो एक जने और एक्स्ट्रा
0: यो से डंक के बैल। तो ये था भैया यूसुफ, बता दिए हैं कि या तार कर सकते हैं नल से इवन तक दरी फाइव इंच तक तुएं तुएं तक सेफ ने फेर तक, या तो नल से इवन तक दरी तुएं सस तक तुएं तक सेफ नन सेफ तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पर है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत
2: खुदनाफंत भाई मत सिला
0: खुदनाफंत सिला कैसे रहले सिला
2: या खुद और भाई साथ खुद
0: सब कुछ मोई
2: या
0: ओक मैं इपन बेरख
2: या और खत प्रीमा
0: मोई सिला
2: या
0: कुछ धल्ले
2: दुई गो छोटी छोटी
0: अरे ये तो बड़ा मोई है वैसे बनी उतना बोल
2: या The oil is weiss, but the most weight word had brought leg.
0: Nee, dat is goeie, inderdaad.
2: Ja.
0: Ja.
2: En nog een
0: en de andere?
2: Een vogel zonder nest blijft altijd op zoek naar een thuis.
0: Dat is inderdaad zo, klopt. Ja. Helemaal gelijk. Nou, ja. Dat is een goeie. Lik, Sila, toen had hem naar bolle, bakje bolle, het dan. Je raakt precies in de roos. Ja. Lik is op de hele rij. En na drie maanden moet je dat weer herhalen.
2: Ja, is goed.
0: Ja, dan, zoals men zegt, begin bij het begin.
2: Ja, is goed, bij. Zal ik zeker doen, ja?
0: Ook ja. Maar volgens mij, ben je binnenkort jarig, klopt het?
2: Ja.
0: En wanneer is dat?
2: 3 juni.
0: 3 juni?
2: Ja.
0: Oh, toen hamar sterrenbeeld, he, inderdaad. Ha, klopt. Toen hamar sterrenbeeld. He. En wat
2: lieve mensen, hè, bhai.
0: Sorry?
2: Zeg lieve mensen, hè.
0: Ze zijn heel lieve mensen, ja, maar steek hun niet aan.
2: Ja, klopt, helemaal.
0: Dan gaan ze over hun rooien.
2: Ja, dat is waar.
0: Ze gaan niet makkelijk over hun rooien.
2: Ja.
0: Maar je chal gaya to chal gaya.
2: Klopt bhai, helemaal ya.
0: Jaise chunta ke maan to, chunta ke maan je to ke chok de le, then have you a problem.
2: Ja.
0: Ander zijn ze rustig.
2: Yes.
0: En dan ga je binnenkort op vakantie? Hum hier aan boord pataki la.
2: Maar kahan weet ik niet hoor bhai.
0: Oh nee, dat moet je ook niet zeggen, want chorwan bhi sune to.
2: Na jaani kahan jaabe.
0: Oh, het is een verrassing.
2: Ja.
0: Nah, mooi. Sila, ik wens jou heel veel plezier op je vakantie straks.
2: Ja,
0: en van harte gefeliciteerd woensdag.
2: Ja, dankjewel, bhai.
0: Aha. Masila, ab batao kon gana se mangat rahi hai. Toh apne ko farras kare.
2: Het is van film Mere Arman Mere Sapne.
0: Aha. En liete.
2: Aankhe hamare ho sapne tumhare ho.
0: Sorry, ek dain phir. Ek dain herhaal nog eens keer.
2: Nog een keer?
0: Ja, aha ka.
2: Ganwa bhai.
0: Aha, ganwa.
2: Aankhe hamare ho सपने तुम्हारे हो
0: हमारे हो सपने तुम्हारे ना
2: सपने तुम्हारे हो
0: रेखल वो फिंदर
2: या
0: नहीं प्रिमा
2: गुडबाय
0: वेलक फिल्म सही है सीला
2: फिल्म मेरे अरमान मेरे सपने
0: मेरे अरमान मेरे सपने M-A-M, Sabine, te pajaben.
2: Ja, is goed bij.
0: Sila, dankjewel. Heel veel luisterplezier.
2: U ook een fijne uitzending en tot de volgende keer.
0: Ja, Sila, dankjewel. Fijne avond.
2: Ja hoor, bij u. Dag, bij.
0: Dit is Sila ji, Ipenburg ke rehne wali. Sila ji, yani maashuka. Sila ji ne taar ki. Haan, chali, line pe koi hai. Faun Hindustani Radio, khudanavant.
3: السلام علیکم رام رام اور نمسکار ستری اکار
0: وعلیکم السلام بھیا نمسکار کیسے سماچار ہیں
3: دھیرے دھیرے کیسے آپ کے اور سبھی خیریت کے
0: بس سب کچھ ڈولے دھیرے دھیرے اوپر والا کے دیا سے صبح ہوتی ہے شام ہوتا ہے رات ہوتی ہے پھر صبح ہوتا ہے
3: پھر صبح ہوتی ہے
0: तो सवेरे जागी रहे तो ताकि लो हम तुम देखे ओ ना हमारा ही प्लेटफॉर्म तो है दूसरा प्लेटफॉर्म ना है नहीं नहीं तभी देखिए कोनो एगो एगो तलवार लेके खड़ा है
3: कैसे
0: तो जान जावे कि हम ना बाटी अब अपने आदर्श
3: माँ भी हो सके दूसरा अच्छा भाई हो सके तो के सपना में बुलाएगा बोली अब तो वक्त नक चाइल
0: तो चाहे आधा स्केयर कर ले रही है जाइक पर तू ना बोल सके एक हफ्ते कॉफी मार हाल खुद रहोगे एक बेल और माँ के ना बोल सके
3: वासी तू बोलिए हम कॉफी आप पे बोलिए तो तुरवक कम रहेगा तू कुछ शराब पी सके
0: नहीं
3: तो चाहिए साथ ही चले के खले
0: या
3: तो कोई जवाब तू दे सके
0: तब पहुंच अब तो देख अब का कर ले तो हम बोल कहें को फ्रुकू बुला ले
3: अच्छा
0: हमार मेसी अब ना आफरा हम लोग बतियाल बगीचे हुआ पहुंचे तो बाजा बंद हो जाए
3: बाजा खाली उन्ना खाली वहाँ बाजा बंद वासी तो अपर कबर में भी वहाँ भी बाजा बंद रहेगा भी अच्छा
0: हुआ जाइए सब हवा निकल जाए टायर पंक्चर हो जाए
3: वो तो सही है
0: भैया मोहम्मद बताओ
3: एगो पहली मेरे दिल का दर्द किसी ने देखा है हम तो मरता सिर्फ खुदा ने देखा देखना है मैं तन्हाई में बैठ कर अस्कर रोते हूँ लोग ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते देखा है
0: बहुत बहुत हेल मोई हेल मोई
3: शुक्रिया
0: बहुत अच्छा बात है अच्छा भैया मोहम्मद अब बताओ कौन गाना मांगत रहे तुसे
3: एगो गाना मैला अब से एगो लता के सुने हम लोग के बचपन के याद होएगा
0: ना खिलवाड़ कर हम सोच के लता वो तो
3: बोल ना उच गोरो मैला देवे वो फिल्म का नाम है आशीर्वाद 1968 के और गीत हैगा एक था बचपन
0: एक था
3: बचपन लता गाई से
0: ईसाई तो हम ना हर कैन कही लगा कि वे मारब तो पाई जाए
3: हाँ कोई बात नहीं गा माँ मोई गाना है कभी कभी सब गोटम मोई गा सुने के वास्ते हम लोग बरका भाती माँ कभी कभी सब नोरे है को हम लोग छोटा रहली अब हम लोग बरका बोली तो हम लोग के बचपन के याद हो गए
0: पुरानी याद ताजा वेल फिल्म से इमरुन
3: आशीर्वाद
0: आशीर्वाद
3: 1968 कहेगा
0: आशीर्वाद ए ये अशोक कुमार के फिल्म वाना है
3: हम सोचिला अशोक के हम सोचिला
0: हाँ अशोक कुमार के फिल्म रहा आशीर्वाद स्वार्थवेद या एक देंग दर्द
3: मामा ये गानों का हम माकल के बाद पे ना सुनिला
0: नहीं तत्कान मत हम ऐसा ही हमारे मूड में ना है
3: अरे बाप
0: हाँ अबे जब ये फसुन अब तो जान जावे
3: हाँ तो तू खले खुश नहीं है
0: हाँ एनाल्फन हम लिख ले लिए
3: हाँ सब सुनने वाले के लिए
0: और
3: सब सुनने वाले का नतील तुल के भी लिए अच्छा
0: एक दांके वेल
3: ओके
0: एब्रूर दांके वेल फैन आफ थे फिर
3: यार सब राम राम और
0: जय सिया राम भैया
3: फैन आफ
0: शुभ रात्रि
3: एक शुभ रात्रि
0: ये था जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला इस वक्त लाइन फ्री है आप तार कर सकते हैं 07-365-22-47 तो जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने के लिए तो लीजिए हम आपको सुनाते ये प्यारा नंबर इस तरह से माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस

0: आंखों में रंग क्यों लाया लता जी। और मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए देखते हैं कोई लाइन पर है या थोड़ा इंतज़ार कर लूँ भैया यूसुफ, थोड़ी इंतज़ार करें या ले लो। अच्छा एक मिनट, जहाँ तक मैं खेरा खैर कोई लाइन पर फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत
1: मैं
0: गंगा
1: भाई। राम राम
0: राम राम जय सिया राम दत्त इस मुफरो तेल मस
1: स्टे तनी फरवारम रहे है तो
0: नहीं क्लब क्लब क्लब
1: जे रेडियो वा बिरतु अमर
0: जे ओ नहीं इंद्र दा तो वांट दी रेडियो इज देंक 15 16 मिनट लेटर
1: ओ
0: या ओ एक दिन टेलीफोन वा से बतियाए दन सत मकलक मैं जो टेलीफोन वा से बतियाए एंत खलेकर ते तो से ना दे ला रेडियो लाइसर दन 16 सेकंड ओंगवे लेटर मा हु इज इट मेट मुफरो तेल मा
1: हमार या है दम
0: तब
1: साइड
0: यानी होंदत जगह बोले सर।
1: अब इवेर में ना मोई जाए तब ना हो सके तो
0: वही तो नहीं प्रेसिस मुफरों तेल में
1: हाँ
0: कुछ कहा हो तो वो धल्ले हैं
1: वो बतिया ना पूछ मार।
0: अच्छा ठीक है अच्छा सुन हम यूनी के बात पूछब नकराई के अनुमान देते तो दो तीन को धल्ले हाँ। रहिए तो
1: अब हम बैठ के सोची ला कौन सी हम करी कि बाकी वेर के लेके कहा वो पुराना वाला रहा आप खाली भूलल बाटी माँ तू सच्चे बोले सोच अब
0: हाँ जो तेरे साथ कोक तेरे जरूर है इंदर पान फौरन काटत के गुनगुनाई है तुम देख के प्लस प्लस से लगा जाई
1: जाम जाम पकाए ले तो हमने सोच मारे कि बर्तन वो आप बेधरल तो वे की
0: ओ अच्छा वो चाहे हो क्या
1: हाँ सब होवे भाई सब होवे सब होवे
0: हाँ दैट इज वायर
1: उतने उतने मौज में जितना आगे आवे सब चले दे
0: प्रसिस मुवरों तेल में मैं तो वेलक लीट करूं भाई फनाफन दी
1: जा जा जा मेरे बचपन कहीं जा के छुप ना
0: जा जा जा मेरे बचपन
1: हाँ
0: जा जा द्रीमाल मेरे बचपन बचपन कहीं जाके छुप ना जा
1: ठीक है
0: रिया प्रेसिस एंड व्हाट न्यूज व्हाट तुफालक ने व्हाट वे तुफालक ने वेत
1: एक्चुअली तो सब चीज जान लिया फनल कार
0: या दैट इज वेल
1: ना पॉलिटिक सुनीला ना तेफे ताकीला हां हमार न्यूज वा बहुत छोटा है साइज
0: ओ अच्छा अच्छा लम्मा हो जाए लम्मा हो जाए तो इन इन माल की ऑन द लाइन है तो ए फॉर 10 सेकंड और पकड़ ले मैं ऑक्स एक्स कोलेगा भैया प्रकाश रामधनी
1: हां
0: हां द एप में नेट एंड द गिफ्ट ऑन दैट सुमन कल्याणपुर इज ओवरलीड वंदाग
1: ओ ओ या मैं वाज बोल का उठ है
0: 89 यार
1: हाँ,
0: अरे संप्रदाय का लिस्ट है।
1: वैसे दैट एक एंकलक नीते इसमें रिवेस दैट है के पुराना जीए है के ना है अब।
0: नहीं दैट इस बार।
1: मादी दी ए साइड के एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हम एक को क्या नाम जान पाए रहे और धाव कर पाए रहे।
0: या दैट हो एक दैट लेस एक नेट या एक मतलब
1: माया है इस तरह मोये लेफ्टेड खात
0: 89 यार
1: 89 इस तो खवेल्डर
0: इट इस एन प्रैक्टिकल लेफ्टेड
1: एन राफी एंड मुकेश
0: दी सेन हेल यंग फॉर लेफ्टेड 59 यार 58 यार
1: मांग नहीं मात इस खवोन लोग हो दी मैं से फाउंड शुरू अब ढेर ना रहेगा हम लोग के टाइम
0: पर फोंस में वो सही द लास्ट से आशा भोसले रहा और ही एंड देन सेइंग द ओदर नहीं मेर देन के योस फोंस में सेइंग द ओदर नहीं मेर नहीं ये वो लास्ट से गो रहा एक दंक से बखोन एरगंस इन 50 सो फील दी इज रोक नहीं मेर
1: अच्छा एक दिन हम लोग के आई
0: वही तो मस है फील फील फॉर अस आफ्टर गलत और
1: या मां हम जहाँ बैठे रहे पुराना गाना ना है तो हम बता दे ला रेडियो
0: मुझे लता मंगेशकर से और रफी से हम बीच दलित खुद खिंग से तुम कौन से इन इट फेल्ट
1: या
0: मैं खुद मुफरा होते अलमा दंक यू वेल
1: आलर बेस्ट है एंड फेल खसेल खाई
0: या एक मैं सुबह को फ़ाइन आफ़न हेल फील लॉयस्टर प्लेसिर and tot de volgende keer.
1: Dankjewel, bhaiya ji.
0: Dankjewel.
1: Dag,
0: brother. ये थी देन हाँ के रहने वाले तेलमा जी। तो शीला जी ने तार कर चुका है, भैया मोहम्मद ने तार की है और तेलमा जी ने भी तार की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। चलिए एक नंबर हम चला सुनाते हैं आपको रफ़ी साहब की। 5 मिनट बाकी है 8:30 बजने में, 5 मिनट 4 हल्फ नहीं। सुन लीजिए ये शानदार गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, ज़बरदस्त गाना है।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ में तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। आपने सुने रफ़ी साहब की आवाज़ में, आपको हम सुनाए हैं। मालिक ने जो लिखा है वो बदल ना पाएगा, ये शानदार गीत फिल्म बेरहम में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए देखते हैं लाइन पर कोई है, एक मिनट। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, खुद नाफंत
1: भैया
0: चांद
1: जा धीरे धीरे भाई,
0: तब मोई कैसे मोई
1: है धीरे धीरे
0: प्रीमा। और कोई नवा हाल
1: हाल तो मोई है, कैसे बोली क्या है धीरे धीरे
0: नहीं धन
1: अभी मोई ईसाई तो है।
0: हाँ बहुत गर्म भी ना बहुत ठंडा सही फिर परफेक्ट
1: या गरम रे मन।
0: हाँ वो दोनों तौके है तो तनी से
1: या
0: लाती हम बीजे स्पोर अख्तर एंड आर नाउ कुल
1: तो या ना तो तैनो में इने ना अंदर करेला
0: मोई मोई
1: चाहे कुछ करे एक मन
0: मोई तो
1: या
0: भैया चांद बताओ गाना से पहले कुछ धल्ले हैं
1: ना भाई
0: इसको था तो बता रहे हैं अपन सीधी बात नहीं ये दो दुरुस्त खान या
1: ओ गनवा बताई ना।
0: हाँ आप गनवा बता दे जरूर।
1: हाँ देखिए तो ख्यालों में किसी के इस तरह होएगा उस फिल्म मुकेश के हैं और फिल्म बटवारा नहीं घंटी फाइव तक
0: बटवारा अरे लिख ले जरूर।
1: अच्छा भाई बहुत धन्यवाद आपके
0: शुभरात्रि और फ्रॉक इसला के
1: खुरुता।
0: जय श्री राम भैया। ये था श्रीमान रघुनाथ चांद रघुनाथ अल्फानंद रेन के रहने वाला। तो 8:30 बज गया है, तो लीजिए पहला सिलेक्शन जो हमने रखे हैं या पहला गीत हम चलाने वाले हैं वो है इपन बेरख। चलो माशुका इपन बेरख में बैठी हुई है शीला जी। माशुका शीला जी ये गीत मांग रही है अपने माशुक के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चाहे दिन है आँख मूंद लेना अंधियारा हो जाएगा तो रात ही में गिनती रहेगा। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश करते हुए शीला जी की तरफ से यूसुफ के लिए इस तरह से प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। और हमने निकाले हैं मेरे अरमान मेरे सपने निकित इंद्रियन शस्त्र 1963 का ये गीत नरेंद्र दत्ता के साज पर यानी एन दत्ता के साज पर। लीजिए रफ़ी साहब आशा जी।

दुनिया में जब तक चांद सितारे हो। और ये शानदार गीत मेरे अरमान मेरे सपने में से हमने निकाले हैं, निकितेंद्रिय शस्त्र का ये गीत एन दत्ता के साज पर, यानी 1963 का ये गीत, और आपको हम सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। और मांगने वाली थी माशूका सीला जी, अपन भी रख के रहने वाली है अपनी माशूक यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ। एक शुभ रात्रि पेश करते हुए सीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत। इस तरह से है गीता दत्त और मन्ना दे जी। ये गीत बहुत दिन हुए हमने भी नहीं सुने हैं, हो सकता है आप भी नहीं सुने होंगे, और अगर हाल ही में सुने होंगे तो मेरी बदनसीबी है। बहरहाल हम आपको सुनाते हैं फिल्म जग्गा डाकू में से निकालकर, शायद फिल्म आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म, ब्लैक एंड वाइट है, गीता दत्त और मन्ना दे जी। गाना का बोल सुनिए।

गीता रॉय जी और मन्ना दे जी मिलके आपको सुनाए फिल्म जग्गा डाकू में से निकाले हैं ये गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अभी मैंने कहा कि सुमन कल्याण पूर्जा का स्वर्गवास हो गया है निकन तख्त साल की उम्र में, यानी 89 साल की उम्र में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, दीराक्षी की तरफ से और सुमन कल्याणपुर जी के सभी चाहने वालों की तरफ से सुमन कल्याणपुर की परिवार जी को हम शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। बहुत से गाने उन्होंने दिए हैं। सुमन कल्याणपुर का पहले नाम था सुमन हेमादी, ये ढाका के रहने वाली है। बहुत छोटी ही उम्र में ये चला आया बॉम्बे। बॉम्बे में यो स्टेज पर गाते थे और कहीं कोई पब्लिक में, तो इन्हें तलत महमूद साहब ने सुना। तलत महमूद साहब ने इन्हें सुना और उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो तलत साहब ने सुमन कल्याणपुर जी को बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री में ले गए, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाए और बहुत से सारे इन्होंने गाने गाए हैं। उनमें से एक हम निकाल रहे हैं निकदिन सशन शस्तक का, फिल्म बदतमीज से शंकर जय किशन के साज पर सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में, जो हमें पता चला है किसी ने मेरे मित्र ऐप की है, तो उस मित्र को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो बताए, क्योंकि मुझे नहीं पता था, आज ही हुआ ये हादसा, कैसे बाद में पता चलेगा। बहरहाल सुमन कल्याणपुर जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनके सभी सारे फैन की तरफ से, चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं फिल्म बदतमीज़ में निकते हैं सुमन कल्याणपुर जी।

पहला पहला प्यार है पहला पहला प्यार, ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज सुनने में आया है कि सुमन कल्याणपुर जी का स्वर्गवास हो गया निग्न तख्त साल की उम्र में, यानी 89 साल की उम्र में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी फैन जो हैं और सभी कार्यकर्ता मुझे और सुमन कल्याणपुर जी के जितनी फैन हैं उनके तरफ से सुमन कल्याणपुर जी को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गाने दिए हैं, हम तो यहाँ आकर बैठ के गीत गज़ल के कार्यक्रम में वरना अपना लिस्ट लेकर आते हैं तो उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ है आपको सुना देते हैं। बहरहाल हमारे सहयोगी जो कल आएंगे आपको अवश्य कुछ न कुछ बताएंगे या कुछ न कुछ सुनाएंगे। जो गीत जो हमने अभी चलाए हैं सुमन कल्याणपुर जी का, पहला पहला प्यार है पहला पहला प्यार, फिल्म बदतमीज़ में से निकाले हैं निगेतिन सस तक का, ये गीत दरअसल में हम उन दिनों बहुत पहली बार सुने थे, रेडियो पर चला होगा लेकिन हमने सुने नहीं थे। लेकिन जब रफ़ी साहब हॉलैंड सुरीनाम में जब आए तो द पारल में उनका शो हुआ और हम लोगों को टिकट नहीं मिला, लेकिन आपको शायद पता होगा द पारल के बगल में द पारल बार था, वहाँ पर बैठकर हम लोग ये शो सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे सुन रहे थे गाने। तो उस समय रफ़ी साहब के साथ आई थी मीनू परसोत्तम ये गीत गाए रफ़ी साहब के शो में आकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी से ये गीत मेरे जहन में बस गया, ये गीत हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये वाक्य हम आपको बता दिए कि रफ़ी साहब के साथ मीनू परसोत्तम जी आए थे और उनका शो हुआ द पारल में, टिकट नहीं मिला, टिकट बाद में फिर मिला लेकिन पहला शो के लिए नहीं मिला था। बहरहाल ये गीत हम चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुमन कल्याणपुर के स्वर्गवास के उपलक्ष्य पर, जो हमारे मित्र श्रीमान प्रकाश रामधनी ने बताए हैं निकनन तख्त साल की उम्र में। 12 मिनट 4 नहीं के, जी हाँ 12 मिनट 4 नहीं के। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है भैया मोहम्मद के लिए, भैया मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए ये गीत हम चला रहे हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में। और भैया मोहम्मद ये गीत मांगे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हम लोगों के लिए, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, तो सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से डायरेक्ट सिलेट के तरफ से भैया मोहम्मद को धन्यवाद देते हुए चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं जो भैया मोहम्मद ने मांगे हैं इस तरह से।

0: एक था बचपन लता जी की आवाज़ में, फिल्म आशीर्वाद में से निकाले हैं। अब ये गीत हम लोगों ने पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। और ये गीत को मांगने वाला था देना के रहने वाला जनाब मोहम्मद। जनाब मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जी हाँ, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सुनने वालों की तरफ से जनाब मोहम्मद को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई पेश कर रहे हैं, एक शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और फिर न्यूज़ के बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। बस हम लोग यूँ गए और यूँ आए।
1: Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, अब टेलीफोन नंबर 07536522447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: www.fahonfm.nl per app tune, या तो वीफी रेडियो या इंटरनेट रेडियो पर। जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। गीत गजल के कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं और जिस समय आप कोशिश कर रहे हैं तार करने को, तो लीजिए, देखता है लाइन पर कोई है। वो अभी नहीं, अच्छा हो गया। हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदराहन,
4: बोल दिया।
0: हेलो
5: हेलो
0: हेलो, खुद राहुल
5: बेया
0: मुफरो बेया,
5: या
0: कौन बेया है? फन
5: वक्त हो
0: इधर फन हो ये। हेलो,
5: या हो ये म,
0: या एक हो रही हो?
5: ओ
0: मुफरो बेया फन इधर,
5: या
0: मुफरो बेया का हाल है? हु इज इट?
5: अच्छा अच्छा,
0: यानी एक बेया और बेल करे तो दस दन
5: बच्ची बोले
0: हम बोले एक बेया और बैल कर रहे थे हम सोची कौन वाला है
5: ओ ओ हां प्रोफेंसी
0: तरह फिर हम बेया आई थी तरह कैसे रही है
5: अच्छा अच्छा रही
0: है आलस प्रीमा
5: सब सब प्रीमा
0: गटैया फंसे हैं
5: बाहर आ गई ली अरे गटैया फंसे लगल
0: अच्छा तो एको कॉफी पी लिए सफा हो जाई
5: रात भर जगह अब कॉफी पी ली ना लाती के तब ना सुत पाई
0: ओ नहीं ये या दत प्रॉब्लम है को का फेन तू आज एक लात कॉफी को
5: ला ओके
0: हमार कॉफी में फाइव सासी जब पी ले तो फिर ना पीला
5: क्लास फिर
0: या
5: नेक्स्ट मॉर्निंग हम खाली एगो पी ले ला क्लाइन
0: क्लाइन कॉफी और कॉफी चिया
5: ओके बोले हाँ
0: अच्छा मुफरो भैया कुछ कहा हो तो धल
5: अरे बोल तो
0: अच्छा
5: बोल दे तो
0: ना
5: इतना ढेर जाने हम खत बोल दे जाएगो
0: कौन जी बोले
5: इतना ढेर जाने हम खत एगो बोल देना मोई वाला
0: तोरे खत ने कहावत बोल दे बोले कटाड़ पेड़ में मुंह में तेल जाने है याने कटाड़ पे पेड़वे में है सोचे अच्छा मुर्गी कटाड़ बंदी क्या ही बोले हां
5: हां कटाड़ जाने ला
0: हां जो बाकी जो ना जो उनके तरकारियां बनावे जो उनके जब खून मुर्गी कटाड़ जो मिटकना है
5: ओ ओ
0: तो ओके खाई खतिन तो इफ चाहिए हाथुआ में तेल लगा लेवे के उठिया में नहीं प्लक रख रहे तो
5: ओ उ कटहर ना है तो उ कोवा
0: हां हां कटहर कोवा हां तो ओके जे खाइए और कटहर वो भी जे छिलिए तो चाहिए लगा दे
5: प्लक रख लगा है खा
0: तो वे कटहर पेड़ में मुंह में तेल
5: या ओ
0: तो ओके खाई से पहले उठिया लगा लिए नहीं तो उठिया प्लक हो जाए
5: नहीं मुंह में बंद हो जाए
0: हां देखो ये वो है को कहावत नहीं करके रहा
5: मुंह में प्लक हो जाए
0: हाँ हाँ लिपोन प्लक हो जाए तो मुल्की कटा
5: या क्लॉक ना ही ओ मोई वाला
0: अच्छा भैया बताओ कौन गाना मांगा तेरे लिए सुने
5: एक यूसुफ के बोले
0: यूसुफ गया वक्ती वक्ती यूसुफ बोले बचपन के दिन
4: किया
0: दिन थे तो पुराना बचपन के याद आ जाए तो क्यों फ्रॉम भैया इंदर तो सो तो बुदुलंग से ही करे
5: अब यहां घाम निकल है और यो व्हाट फ्रोलक और तब कभी याद आ जाए तो
0: याद तो सो
5: या या चाहे मोरिया में लेके चले के अंदर से खाली आउट आउट होए तब पावर होए तो वही चीज वाली है तब तो उसी हो जाइए
0: हां बाकी जो पुराना याद याद करिए तो बहुत मोई लगे है बचपन के दिन भुला ना देना वो भी है और ये बचपन के दिन
5: क्या दिन थे
0: नाउ प्राप्त फ्रॉम बेया थैंक यू ऑल और कुछ रहा भी सौंदर
5: ना ना ना ना
0: यस गुड ना ओके
5: थैंक यू वेल और फाइन आउटस्टैंडिंग
0: या
5: Tot volgende keer.
0: Jo, een fijne uitzending. Heel veel luisterplezier. En till next time. Next week.
5: Is goed. Ja,
0: dank je wel, mevrouw Bea.
5: Ja, graag gedaan.
0: Hier is Bea die uit Utrecht. Bea die aapko bhi bahut bahut dhanyawad diya ja raha hai. Chaliye, agla geet hum pesh karne wale hain aur wo hai Denha ke rehne wali Telma ji ke liye. Telma ji, shubhkamana ke saath एक शुभ रात्रि पेश करते हुए दनहा के रहने वाली तेलमा जी के लिए और तेलमा जी भी अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर रही है और किस तरह से लता जी की ये गीत जी हाँ लता जी की ये गीत सुनकर फिल्म जंगली में से निकाले हैं दनहा के रहने वाली तेलमा जी के लिए तेलमा जी आउस टू बिलीव शंकर जय किशन के साथ

0: जा जा जा मेरे बचपन, शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म जंगली में से निकाल कर लता जी आपको सुनाए। और हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये गीत चला देनहाँ के रहने वाली तेलमा जी के लिए। देनहाँ के रहने वाली तेलमा जी के लिए शुभकामना के साथ तेलमा जी ये गीत पेश हुआ आपके नाम पर। तेलमा जी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाए मिलकर। तेलमा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाउनिलस्तानी रेडियो
1: खुदनाफंद
0: भैया in het kwadraat. Bea uit Den Haag.
1: Hebben juist elke zondag in India takila. Toulonke sunila, dan boela jij la takike. Als je hem aankalie, maar mijn aandacht is ook niet daar. Maar zaterdag is herhaling. Ga ik herhaling kijken.
0: No,
1: ik vind het zo mooi. Hij is een zondag de kawe. Dus toen kan je in India te wanna punch bij je.
0: Nou, kan ik naar punch babe?
1: Omdat het. Heel India sub fietsen kregen.
0: Oh, fietsen.
1: Ze zijn namelijk fietsen, toch? Er zijn een hele groep mensen, India, Nederlandse, hoe ze wel maar fietsen kregen.
0: Oh, fietsen kregen.
1: हाँ फिट कर रहे हैं।
0: ओ नट हम ना हम दुई बसी गिरी दुई व्हील पर ना फिट कर पावे।
1: हाँ दुई व्हील पर तू देखिए कैसे फिट हो गए। वो सब के चाहे अपने से अपन कमरा खोजे के ईसा खाना पीना पाए हैं, खाना पीना खाते हैं, सब बैठ के खा नीचे जमीन पे बकरा दुई को बैठ के खाते हैं।
0: ओके
1: अते सो लोग दी पोखरा मा सातरा को एनी रे सर हाल है मुझे कह के।
0: ओके सालिक दो।
1: हां सातरा एनी रे सर हाल है मुझे कह के।
0: इसको भैया बताओ कोनो गीत गजल में कुछ रख ले है फोरदा चेन ली दो रखिफ्त
1: वो ना एक है ना मोपिया
0: है
1: लाख फन मोपिया
0: बोल
1: मवारिस द मोपिया इफ कैक हो
0: देखो पिछवा दे रहा था पर
1: देला हमें मोपिया ना मिले है। ओ हां संस्कृत बोलना संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी बीवी को भी सिखाइए। दुई को पप्पा चस रहा तो वो दोनों अपने में से बतिया हैं।
0: ओके
1: सम्मोप संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी बीवी को भी सिखाइए, ताकि आपस में झगड़े हो तो पड़ोसियों को लगे के घर में हवन चल रहा है।
0: हाँ ये संस्कृत तो ना जानी है
1: तो सोचिए हवन हो सुनी का होवे हैं
0: या प्रसिस
1: तो इस तो
0: दादे जिंदरदार
1: एन क्लाइन चे हपिकिन
0: फिर मारफ
1: अपनी खुशी दूसरे में मत ढूंढो। अपनी खुशी दूसरे में मत ढूंढो, तुम्हारी खुशी आपके पास है। या और हम लोग अपन खुशी दूसरे में खोजिला सवाल सबके खुशी भगवान अपन दे से तो
0: सबके पठाई से कोई
1: हाँ, नसीब सब कोई के खुशी सब कुछ दे के सब कुछ दे के पठाई भगवान, मगर फिर भी हम लोग भटकीला इधर उधर खोजिला तो वेल वे तो हालस बे ओन से हैब
0: नहीं इधर इस इंदर रात
1: एक लोग इस तो मैं या खुद नहीं इधर इन का नत फेंड जस दी खात सुक तो इस तो इस कैक ओ या खूबसूरत कोई नहीं होता। खूबसूरत कोई नहीं होता, ये आंखें जिसे पसंद कर लेता है वही खूबसूरत लगने लगता है।
0: वाह क्या बात है।
1: उदास हो कभी तो मेरी हंसी मांग लेना। उदास हो कभी तो मेरी हंसी मांग लेना, गम हो तो खुशी मांग लेना।
0: क्या बात है।
1: रब आपको लंबी उम्र दे, एक पल भी कम पड़े तो मेरी जिंदगी मांग लेना।
0: शाबाश हेल मोई
1: ए फकाई का
0: प्रख्त और धल्ले
1: ए फकाई को और अपने नख मेर हाथ। Dit is een moeilijke. गवाही ना मांग मुझसे कि मोहब्बत में कितना चाहते हैं, अरे वो खुदा ही परेशान है हमसे कि हर दुआ में तुम्हें क्यों मांगते हैं।
0: हेल मुई कुछ ना ठीक है
1: कितनों के साथ खेले हो, कितनों के साथ खेले हो, अफसोस फिर भी अकेले हो। आपके के साथ खेल खोई
0: वही तो
1: महबूब ऑन सो बचपन टाइट यंग टाइट मैं दीख स्पेल अरे उधर भी फुटबॉल बेतल खेले हैं
0: या
1: मैं तो कॉम्पटन बाह बच्चे तो अलेन बन हैप्पी नहीं मानते मैं तो स्पेल हूँ
0: एंड देन हैप्पी बाल द हैरिन रहेगा
1: कौन सी बोले
0: देन हैप्पी बाल द हैरिन रहेगा
1: या सो इस या क्लॉक क्लॉक
0: हेयर खुद में
1: या
0: भैया अब बताओ क्या मांगा तेरे लिए सुने आज
1: ओया मलिच मलिच अन वेट अ कप आउट इट
0: थोड़ा ला सही है कजवा
1: लिच
0: देख पछवा पे गिरसवा पछवा है
1: जो लिच हम ना सुनीला इफ कै कर फन फिल्म सम डील वी स्पिल करें दिलीप कुमार कोई है एंड लिच फालता एंड तलाक तलत फनी टी टू इन फाइस्ट दिल में समा गए सजन दिल में समा गए
0: सजन
1: कौन समय लता एंड तलत ओ लिखे फिर ले कहा हम लोग रोज सुनी ला
0: नहीं प्रीमा
1: या
0: नहीं खुददान फिल्म संगील नहीं कि तीन
1: ट्वीन
0: फाइव तक लता एंड तलत दिल में समा गए सजन
1: या
0: रही खल ओके बेया थैंक यू वेल
1: या En ik wens jullie ook een hele fijne avond. Oh ja, Thelma, ik heb er lang niet gesproken. Ik wil langs deze haar de groeten doen. Thelma, de groetjes.
0: Nou, Thelma heeft het zeker gehoord.
1: Want ja, zeker, zeker. En ze weet dat ik bij haar gedraaid ben. Ik heb er een paar keer gesproken.
0: Oh, mooi.
1: Nou, iedereen de groeten nu. Iedereen de groeten. Iedereen veel luisterplezier.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer weer.
0: Bea, dankjewel namens van Universitani Radio. Heel veel luisterplezier en
1: ja,
0: tot de volgende
1: keer. Zeker.
0: Dag Bea.
1: Ja, is goed. Dag.
0: ये थी बेया जी देन हाँ के रहने वाली। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, घड़ी पे देखो हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। मेरे सामने बैठा हुआ एक माशूक तो इपन बेरोक के रहने वाला है और वो माशूक एक गीत मांग रहा है अपने माशूका के लिए जो इपन बेरोक में भी बैठी हुई है। तो लीजिए यूसुफ की तरफ से सीला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए एक सांस में बोली ला माशुक यूसुफ की तरफ से माशुका सीला जी के लिए। चलो हम सुनाते हैं आपको तलत अजीज यानी तलत महमूद साहब का साहबजादा। सुनिए इस तरह से

0: खूबसूरत है तेरी आंखें तलत अजीज़ आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश किया फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और गीत के मांगने वाला था मेरे सामने बैठा हुआ है जनाब यूसुफ। जनाब यूसुफ ये गीत मांगे हैं, यानी माशूक ने ये गीत मांगे हैं अपने माशूका के लिए जो इबन बेरह में बैठी हुई है सीला जी के लिए। माशू की तरफ से माशूका के लिए शुभकामना के साथ एक शुभरात्रि पेश करते हुए यूसुफ जी ने मांगे सीला के लिए। सीला जी, यूसुफ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फोन हिंदुस्तानी राजीव खुदरावंत
1: हुई नाम हो इस पर एक मतमीला क्या चुतुनेर
0: दख मुफरामीला
1: उखातत में तू
0: चले चले उसत में तू
1: क्या ओखोत
0: है नुसत में भैया मंसूर
1: ओखोत
0: बैठ का उबे का बैठ के अगोरत हो ये महीने से इवानिर बकिन तो यूज
2: एलफ
0: या वे वेगा के धुन में बैठा लो भैया मंसूर
1: या एक दिन मत है मैं फील मैं सुना तूने
0: या एंड हु इज इट फर्दर मफरा मिला
1: आ चले है धीरे धीरे
0: कब मोई लड़कन मोई फैमिली से
1: आ सब कोई इधर ही मां खुद में खुद से वे तो तो तो लग रहा है भाई
0: हम मोई समा करने ताते खुद आलमान खुद मफरा मिला हम सपना दिख लिए कि तू बैल कर ले है और कहावत बोल लेगा अच्छा कोई बात नहीं आंदर की अरदान
1: या आंदर के
0: तो ओ तम फोरोइट में दिखली सपन हुआ बस आंदर की अर है
1: या वो फिर हम मंदी के अनु दौर के तो फिल्म आरती आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया
0: आपने याद दिलाया
1: तो मुझे याद आया
0: प्रीमा तो मुझे याद आया ये प्रार्थक लिए
1: या
0: मुफ्रो मिला थैंक यू वेल
1: असिब्लीव एंड रिक्वेस्ट यू मोया आफंत एंड फॉर स्टक्स वेल गाइस
0: वे वे से यू हो को मोया आफंत एंड भैया मंसूर और फेन आफंत एंड दे फील लॉइस ऑफ प्लेजर एंड टॉट द फॉलोइंग द केयर ठीक ओके थैंक यू वेल दा। ये थी मिला जी सुतरमेर के रहने वाली। तो गीत गज़ल के कार्यक्रम में भैया यूसुफ के गीत के बाद हम पेश कर रहे हैं देखते हैं अल्फन अंदर इनके रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला। भैया चांद रघुनाथ और खिसला की तरफ से शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये पुराने गीत हम आपको सुना रहे हैं अल्फ़रान के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ और खिसला के लिए। इस तरह से आ रहा है

मुकेश जी और गीता रॉय जी, गीता दत्त कही है या गीता रॉय ये कहीं बात है, ये दोनों मिलकर ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं और गीत गजल के रात में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। और पेश करवाने वाले थे अल्फा ऑन द रेन के रहने वाला श्रीमान चांद्र गुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला जी, इन दोनों को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। जो जिस गीत के जिक्र है भैया चांद आपने की, वही गीत हम लोगों ने मिट के चलाए हैं शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। चलिए प्लेयर में हमें गीत रखे हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको किया सुना रहा है।

मेरी भीगी भीगी से एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाइए ये शानदार गीत। हमने पेश की अनाउंसर चॉइस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है बेया जी, विदरा के रहने वाले बेया जी। बेया विदरा के रहने वाली, शुभकामना के साथ बेया जी के लिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं। और चलिए बेया जी आपको भी धन्यवाद पेश कर रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, इतरा के रहने वाली बेया जी के लिए।

बचपन के दिन भी क्या दिन थे, आशा जी आपको सुनाए और गीता मिलकर, गीता दत्त जी मिलकर, फिल्म सुजाता में से निकली नेक नफ्त का ये गीत एस दे बर्मन के साज पर हमने पेश किए। और ये गीत चला देखते हैं उतरह उतरह के रहने वाली बेया जी के लिए। बेया जी, उम्मीद गीत आपको

फिल्म संग दिल में से निकाले हैं। यह शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये गीत को चलवाने वाली थी देखते हैं दनहाक दनहाक के रहने वाली बेया गुजरात जी के लिए। शुभकामना के साथ बेया जी एक शुभ रात्रि पेश करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और भैया यूसेफ और मेरे तरफ से बेया गुजरात जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी गीत बचा है और वो है देखते हैं सूतरमेर स्वीट लेक सिटी सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ ये

शानदार गीत हम चला रहे हैं बस फिल्म आरती में से निकाल कर। निगदी त्वीन शस्त्र का ये गीत रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में रोशन के साज पर चलिए। सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ और साथ ही साथ भैया मंसूर के लिए। चलिए रात्रि का वक्त है, गीत गज़ल के कार्यक्रम है, इस तरह से आ रहा है।

रोशन के साज पर फिल्म आरती में से निकाले हैं ये शानदार गीत अवचला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। रफ़ी साहब और लता जी मिल के आपको सुनाए और गीत के मांगने वाले थे वो है सूतरमेर के रहने वाली मीला जी। उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है आपको। एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है।

0: आपने यूं ही दिल लगी थी, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियन आपको सुनाए, फिल्म मेहंदी लगी है मेरे हाथ से निकाले है, निकनी त्वेंस का ये फिल्म है और हमने पेश की। चलो यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। भैया यूसुफ सभी को धन्यवाद दीजिए।
1: या एक विलाद दी मेंस बदांक दी फनाफन के बखबेल्ट दैट इज मेफ्रो सीला वे इपनबर्ग द हेर मोहम्मद आई देन हाग मेफ्रो टेलमा आई देन हाग
0: ओ द हेर यूसुफ
1: वे इपनबर्ग द हेर चंद्रा गुनात आई अल्फा अंडर रेन मेफ्रो बेया
0: Utrecht,
1: mevrouw Bea Gedraat uit Den Haag en mevrouw Mila uit Zoetermeer. Dat waren de bellers voor vanavond. Hartelijk dank namens mij en de heer Ganga.
0: Bea Joost, dankjewel. Jij ook. Ik wens jou een fijne vakantie en tot de volgende week. Heel veel plezier. Bea Jozef, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: तो यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने पेश की इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा।

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, और विशेष करके जो जो लोगों ने तार किए, भैया यूसुफ आप सबको भी धन्यवाद दे चुके हैं। मैं भी अपने तरफ से नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि भैया यूसुफ ने नाम ले चुके हैं। जिन लोगों ने तार किए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने बाद में तार किए हैं लेकिन लाइन पर नहीं आ सकता था क्योंकि कार्यक्रम तो हम अब समाप्त कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है अगर जब पहले तार करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों पूछते हैं कि कार्यक्रम अब बढ़ाओगे कैसे, अगर जब बैलर्स रहेगा और लोग तार करेंगे तो बढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्लानर भैया जॉनी नंबर वन तो हमेशा कह रहा है गंगा चाहे 11 बजे तक चलो चाहे 12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ही लोग के कार्यक्रम है, आप ही लोग उसे बढ़ाइए या घटाइए, घटाइए मत बढ़ाइए। बहरहाल आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, आप सबको एक शुभ वीकेंड जो आगे बाकी बचा है मनाइए, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आप सबके बाकी का वीकेंड जो है एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद है हमारे सहयोगी मिलके आपकी सेवा करेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला दोंदरदाख, जी हाँ आने वाला दोंदरदाख दिन 12 और 3 के दरमियान, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़, टिल थर्सडे।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आज हम आप लोग को ले चलेंगे पुराने यादें की ओर। और लीचेस नामलेक दी फन यार 1974 इन सुरीनाम द हिट सॉन्ग्स वास। आओ सुना जाए ये कौन सा गीत है जो आप लोग शायद बहुत दिन हो गया होगा नहीं सुने होंगे, तो आप यहां से सुन सकते हैं। दिस इज लीफो ही हो।

फनफुनटेल हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और कुछ कन यानी कि गीतों की बिहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफरत ना हो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करना मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफा आई तो हर कोई करता है। तो हम चलते हैं, हमको तुम तो हो गया है क्या नैतिक लता जी और मोहम्मद रफी जी परमा श्री मोहम्मद रफी जी और यानी कि करोड़ों का दिल चुराने वाला, और वो कौन है, हमारे मुकेश जी है।

और हमसे तो हमारे लयस्तरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जब शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ जाना, कल हो ना हो और कल हो ना हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो ना हो और मेहनी लगा कर।

और माही कल हो ना हो हमारे प्यारे जनता की कहते हैं दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज, उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त, तो हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना, मूवी के नाम है दिल का क्या कसूर और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

वादा तो और जरूर टूट जाता है, कभी कभी वादा जो लोग करते हैं वो टूट डालता है कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का

और बड़ी गुमान प्रति वोमन कहो ना कल हो न हो, शाहरुख का ये फिल्म है। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नोखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए मेरे यारो, न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल आबाद रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना मूवी का नाम है, जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

और तेरी दर से ये दिल आमाद हुआ हमारी। दोस्तों तो कहते हैं बिन तेरे अधूरा हूं मैं, तू मिल जाए तो जॉनी पूरा है। और कहते हैं दो चार दिन का इश्क हम नहीं किया करते हैं, और गए का इश्क हूँ यू ही किसी से प्यार नहीं करते हैं, और गए का घर का और इश्क हूँ और को यू ही किसी से प्यार नहीं करते हैं। तू मेरी सबसे खूबसूरत भूल है, तू मेरी सबसे सबसे खूबसूरत भूल है, तेरे हर खुशी और गम मुझसे कबूल है। अलका याग्निक और शंकर महादेवन की ओर हम चलते हैं हमारे यारों।

और छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तू मेरे जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो, तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारो कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और जरूरत हो तुम मेरी, जरूरत हो तुम मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो ये और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है हमारे यारो। तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गली लग जा फिल्म के नाम है अप्रैल फूल का ये और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है यहूदी सॉन्ग ये मेरा दीवाना है दिलीप कुमार मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए सिंगरेश मैथी मुकेश।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मांड फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में ऐरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवे में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलेंगे कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं, वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाला बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, समान्य, जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूते उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आंख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गाय हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा। अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए, खास करके हमारे बहन और लक्ष्मण जी जो आज यहाँ माला माल कर दिए डिबिया के डिबिया मिठाई कॉफी और फ्रॉइड के साथ, तो उनको हार्दिक से अभिनंदन करते हुए जैसे कि इच्छा है। और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शेर शायरी के साथ शांता जी, और फिर उसके बाद में हमारे मास्टर जी भी उपस्थित हो गए हैं पैनल के पीछे। तो शांता जी कुछ कहते हैं, फिर आगे हम ले जाते हैं कार्यक्रम मास्टर जी के साथ।
1: धन्यवाद संजय जी। तो मैं कहूँगी कि जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। लिफ लो सरार्स। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतनी बार मुझे मौका मिली है आपको नमस्कार कहने को। तो स्वीकार कीजिए एक बार फिर शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम नमस्कार ज्योति का प्रकाश।
2: बहुत ही सुंदर शब्दों में शांता जी ने अपना परिचय अपने मुखार बिंद से प्रस्तुत किया है। फाउन हिंदुस्तान रेडियो के सभी सुनने वाले श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार। इस बार भी हम अपना कार्यक्रम लेके ज्योति का प्रकाश में इस बार लेके आए हैं गंगा में विसर्जित अस्थियां कहाँ जा रही हैं, इस बारे में बातचीत रहेगा। और साथ ही साथ बीच बीच में बहुत ही शांता जी के पिटारे से सुंदर से नगमे और उनके साथ सब लोग इंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्यों ना संजय जी जो लोग उदास बैठे हैं उनके लिए कुछ किया जाए।
0: जरूर राजेंद्र जी, जो उदास अभी बैठे हुए हैं घर से, तो उनके लिए जो गीत हम सब हर सप्ताह चलाते हैं और वो गीत को हम सब प्लेयर पे इस समय पे रख चुके हैं, और शांता जी कुछ आज और कुछ लेकर आए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी हम सबको और आज काफी बातें हैं राजेंद्र जी, ये मैं कह सकता हूँ आपके साथ। तो क्यों ना हम तेरा राम जी करे बेड़ा पार की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
2: जरूर

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो मन तो उदासी नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं संजय जी आप? जब राम जी बेड़ा पार कर ही रहे तो मन क्यों उदासी हो?
1: मन उदास
0: न चाहे हो, जब राम जी बेड़ा पार करेंगे तो मन उदास हो ही नहीं सकता।
1: हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ पूछने के बात है ही नहीं राजेंद्र जी।
2: सिर्फ विश्वास करने
1: बस के पास विश्वास करना है।
2: हाँ।
1: और जैसे कि शांता जी भी कह रहे हैं कि विश्वास करना है। और राजेंद्र जी, जैसे आज हम सब का कार्यक्रम विषय है कि बता दो आप विषय, क्योंकि हमारे खोजी सेना जो है ना, जैसे आपने कहे थे
0: विषय है कि गंगा में विसर्जित अस्थियां जाती कहाँ है,
1: कहाँ जाती है,
0: कहाँ जाती,
1: तो ये इसके बारे में। तो
2: गंगा में विसर्जन अस्थियां,
0: हाँ,
2: विसर्जित अस्थियां।
1: राजेंद्र जी
2: अस्थिया का
1: मतलब, हाँ,
2: मतलब
1: थोड़ा थोड़ा
2: बोले तो
1: बता दो राजेंद्र,
0: मतलब हड्डी,
1: हड्डी,
0: हड्डी की जो अस्थि हमारे मनुष्य की जो हड्डी है,
2: हाँ,
0: जब ये पूरा वो कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा बच जाती है तो वो विसर्जित करते हैं गंगा में।
2: अच्छा,
0: वो जाती कहाँ आखिरी, जब देखो तो गंगा तो एकदम निर्मल ही निर्मल।
2: देखो राजेंद्र जी,
0: जी
2: मैं सच कहूँ अस्थियां मैं सोच रही थी ये बॉडी,
0: हाँ,
2: मर जाने के बाद ये बॉडी अस्थि कहते हैं, पर आप तो इतने अच्छे से समझा दिया कि अस्थियां हड्डियों के कहते हैं,
0: हाँ,
2: कि जलाने के बाद जो बचा है हड्डियां,
1: हाँ,
2: वो हड्डियां गंगा में विसर्जन करे तो उसका क्या होता है,
0: जाति कहाँ है,
2: और जाति कहाँ है, हाँ,
1: क्योंकि विसर्जन तो होता है ना,
0: विसर्जन, हाँ, हाँ, तो होता है।
2: अच्छा,
1: पर राजेंद्र जी गंगा की ओर बढ़ने से पहले हमें तो ये जानना चाहिए, क्योंकि अब तो ये मालूम हो गया है कि अस्थिया के मतलब क्या है, अस्थिया के मतलब क्या है इसका मालूम हम सबको हो गया है,
0: हाँ।
1: और ये भी है कि हम लोग हॉलैंड में भी अस्थिया को विसर्जन करते हैं ना,
0: हाँ।
1: यहाँ पर स्कैफनिंग पे, कहीं रोटरडाम में, और अब तो ऑफिशियल भी बन गया है एक रोटरडाम में,
2: अच्छा,
1: अस्थिया विसर्जन करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऑफिशियल नहीं था। और यहाँ पर खास करके लोग कहते हैं ना राजेंद्र जी कि कभी कभी कहते हैं कि हाँ, एक गोरे लोग करते हैं
0: जी,
1: कि पेड़ के किनारे जा करके और अपने अस्थियों को विसर्जन करते, कहते कि हाँ वो डरते थे और वो पानी से डरते थे और उसका इच्छा था और पेड़ के पास जाकर को विसर्जन करने को। तो यहाँ हॉलैंड में भी ऐसा होता है,
2: अच्छा,
1: पर राजेंद्र जी इंडिया में कैसे होता है गंगा के सिवाय?
0: हाँ, जहाँ जहाँ जहाँ गंगा, गंगा एकदम पतित पावनी देवी है, और जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ तो लोग पूरी बॉडी को गंगा के किनारे लेके ही वो जलाते हैं, लेकिन उसके बाद वहीं से वहीं विसर्जित कर देते हैं, लेकिन और जगह जहाँ दूर करके वहाँ पे जला के बॉडी को, फिर जो फूल है, फूल बोलते हैं उनको, जो राख और हड्डी बचती है उसको फूल बोला जाता है, उसको एक पोटली में बांध के और एक घड़े में रख के गंगा में ले जाते हैं
2: जी,
0: वहाँ से ले जाते हैं गंगा में,
1: वहाँ से,
0: हाँ, तो विसर्जन करते हैं गंगा।
1: तो एक पोटली में होता है, पोटली कहते हैं एक एक कपड़े के बना हुआ, जैसे आपका
0: बना हुआ, अरे एक घड़ा होता है मिट्टी का, तो उस पोटली में घड़े के अंदर रख के पोटली से बांध के फिर उसको लेके जाते हैं विसर्जन करने के लिए।
1: ऐसा, शांता जी आपको पता था एक बात?
2: हाँ, हमने देखी फिल्मों में तो पता है, तो जैसे राजेंद्र जी बताते हैं तो मुझे को ये नज़र आता है। और यहाँ पे सब लोग धरते हैं उरन, उरन,
1: उरन कहते हैं उसे,
2: उरन नेदरलैंड्स में उरन कहते हैं।
1: तो राजेंद्र जी हमें तो अभी चलना है, आज जो हम सब का विषय है,
0: हाँ,
1: कि गंगा में विसर्जित करने वाले और अस्थिया को क्या होता है, अभी उस ओर हम सबको बढ़ना है। क्यों ना पिटारा खोलते हैं,
0: हाँ, पिटारा पे जरूर चलते
1: हैं। और पिटारा खोलते, पिटारा से निकालते, देखते हैं शांता जी क्या तैयारी करके लाया है।
0: हाँ शांता जी, बहुत ही सुंदर जो गीत है, भजन है, खिलौना माटी का है,
1: खिलौना माटी का, तो चला देते हैं
0: जरूर।

0: खिलौना माटी का। राजेंद्र जी, किसी ने कहा कि किसने मिट्टी से पूछा कि तुम इतने ठंडी क्यों रहते हो, ना?
1: मिट्टी से?
0: किसी ने मिट्टी से पूछा कि तुम मिट्टी तो है पर इतने ठंडे क्यों रहते हो, तो मिट्टी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना है, उसे घमंड और गर्मी किस बात की है, बात की ना?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो राजेंद्र जी, आज का विषय कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियां क्या होता है, उसके कहां जाते हैं। अभी तो आप चलाने वाले हैं वो, पर शांता जी भी कुछ लिख रहा है मेरे ख्याल से। शांता जी, ये प्रश्न होता है कि हम सब होलांग में अस्थिया को विसर्जन भी करते हैं, द्रोतडाम जाते हैं और या अलग अलग जगहों पे, और जाकर के अस्थिया विसर्जन किया जाता है ना। आपको पता है सूरीनाम में कब से और पहला जो दाह संस्कार हुआ था, इसके बारे में आपको कुछ पता है?
2: पहला दाह संस्कार हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल की आपने, मुझे पता नहीं।
0: नहीं पता। राजेंद्र जी, आपको पता? नहीं पता।
2: मैं तो खुद जानती हूँ, मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरे माँ बाप मेरी को लेकर गई थी वैखनार शही। हाँ, तो वो पहला बार जो हमने गई थी और देखी थी।
0: तो शांता जी, वैखनार शही शायद ये ख्याल भी होगा आपका कि कैसे वहाँ पहुँचे होंगे, रास्ता कैसा था?
2: रास्ता कच्चा रास्ता था, एकदम शांति पासी।
0: राजेंद्र जी, आपको पता है कहाँ वैखनार शही बनाया गया सूरीनाम में?
1: नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक।
0: अभी नहीं देखा
1: ना?
0: तो क्वाटा के दाम आप नहीं जानते भी
1: ना?
0: क्वाटा के दाम से जाना पड़ता है। क्वाटा के बारे में तो सुने आपने ना?
1: क्वाटा भी नहीं सुनेला।
0: लिफोर्नो खाली। तो लिफोर्नो के सिवा और शहरों है सूरीनाम में, और एक होता है क्वाटा। तो क्वाटा के डाम से निकलते हैं बस दरदर जैसे पास होते हैं तो आ जाते हैं
1: भिंडी डाम।
0: तो मिस्टेक हो गया शांता जी। थोड़ा लाइव प्रोग्राम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है राजेंद्र जी। वैसे तो कहने के देखा जाए राजेंद्र जी की भारत में, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सब नाम बदल दिया, तो ये तो मैं तो बस छोटा काम किया कि बस ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि अभी हम आपसे कहे ओकरो दाम तो ओकरो दाम का समझ आपके आएगा या नहीं, ये तो नहीं आएगा ना?
1: ना।
0: तो भिंडी तो ये तो आ जाएगा। तो बस मैंने ट्रांसलेट हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि ये पता है कि नेखनती नेखन शस्तक में और वहाँ बनाया गया समुन्द्र के किनारे, हाँ, एरस्त दाह संस्कार श्रीमान उदय सिंह फर्मा जी का, और वहाँ पर किया गया। बहुत तकलीफ से वहाँ पहुँचे लोग, और बहुत तकलीफ से वहाँ पहुँच करके, और अभी ये बात को वहाँ का और ज्ञान नहीं था कि कैसे और दाह संस्कार को, और यानी कि सब व्यवस्था जैसे आजकल होता है, आजकल आठ और दाह संस्कार एक ही दिन में वैखनार शही पे कर दिया जा सकता है ना, उतना कैपेसिटी हो गया, उतना वहाँ का वातावरण बना दिया गया है वहाँ पर, उतना ज़्यादा और गाड़ी को पार्किंग के सुविधा हो गया सब कुछ। पर उस समय के बात है और नेहती नेहन शस्तक के बात है, जो वहाँ पहला बार ये बनाया गया सूरीनाम देश में दाह संस्कार किया गया, तो बड़ा मुसीबत से वो कार्य को किए गए थे,
2: इसलिए वो आज तक प्रसिद्ध है।
0: जरूर प्रसिद्ध है। हाँ। पर आपका बटन ऑन नहीं है शांता जी, तो आपने कहा कि वो आज तक प्रसिद्ध है।
2: हाँ, वो आज तक ही प्रसिद्ध है।
0: जरूर जरूर। हाँ। और आज हमारे देखो देखा जाए कि सूरीनाम में और कितना दाह संस्कार होते हैं, और जा करके वैखनार शही से, और वहाँ पर पहुँचने के लिए भी जो रास्ता आदि बना दिया गया है, तो अब बहुत सुपास हो गया हम।
2: हाँ,
0: सब के लिए।
2: जी, वो तो बात है इस।
0: और पर आज का विषय जो है कि गंगा में जो कर किया जाता है अस्थिया को, उसका होता है क्या? तो राजेंद्र जी,
1: जी
0: क्यों ना पहले हम एक गीत चला लेते हैं।
1: जरूर,
0: क्योंकि पिटारा तो फुल है।
1: हाँ, जो गीत के बोल है वो यही है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई।

0: देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान तो बहुत बदल गया है, आप संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे इंसान कितना बदल गया?
1: मुझे तो नहीं लगता बदला।
0: तो आप बताओ कुछ।
1: शांता जी आपको लगता है इंसान बदल गया?
2: इंसान तो बदला नहीं, क्योंकि अभी सभी को दो आंखें, दो कान है, दो नाक है, एक नाक है, एक मुंह है।
1: राजेंद्र बल्कि जैसे शांता कहते हैं ये तो बॉडी का और पहचान दे रहा है। पर देखो राजेंद्र जी ऐसे है कि त्रेता में था मंत्रा, मंत्रा था कि ना,
0: मंत्रा था।
1: और अब है मंत्रा कि नहीं?
2: आज भी है,
0: आज भी है।
1: और द्वापर में था सुकनी,
0: सकुनी मामा,
2: सकुनी
1: आज भी है कि नहीं?
0: आज ज्यादा हो गए।
1: तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला।
0: हाँ नहीं, उस समय इंसानियत ज्यादा थी, उस समय एक सकुनी थे आज बहुत हो गए।
1: हाँ
0: उस समय एक मंथरा थी आज बहुत मंथराएं हो गई है। तो ये सब बदला है।
1: तो त्रेता में वही बात था और द्वापर में वही बात था, और देखो कलयुग में भी यही बात है कि हम जन्म लेते हैं ना, तो हम हमारा जन्म होते हैं, जबकि हमारा जन्म होते हैं कोई डेढ़ ढाई किलो के होते हैं ना, जब बेबी होता है। और हमारे मरने के बाद हमारे और अस्थिया, हमारा दाह संस्कार होता है, बस अस्थिया और पोटली में डाल के, यहाँ पर शांता जी ने कहा किस में डाल के देते हैं?
2: नीदरलैंड में एरन कहते हैं।
1: तो एरन में डाल के देते हैं, तो वो भी तो ढाई डेढ़ किलो के हो जाता है,
0: बस उतना।
1: तो हमारा जीवन है क्या?
0: हाँ जीवन
2: मुट्ठी
0: तो
2: भर राख,
1: मुट्ठी भर राख, वो जितना लेकर आए थे वजन उतने लेकर जा रहे। तो हमारे जीवन में हम चतुराई, हम यादा प्रकार के और अपने चलाकी किए, रंग बिरंगी कार्यों को किए, और अंत में बस उतने बन के चले जाते हैं
0: बस।
1: तो राजेंद्र जी इसमें आपका संदेश क्या है? और क्योंकि अभी तो हम लोग के छलांग लगाना, और राजेंद्र जी गलती से बटन ऑफ नहीं करना, पीछे देखो उंगली उठा दिया मैडम
0: जी।
2: क्योंकि अभी ने आपने सवाल की ना, तो उस पर मुझे ये बात आ गई है, तो जरूर से मैं कहूँगी कि ये जिंदगी और शरीर, जिंदगी और शरीर है संजय जी, दबी है मौत के एहसान में। ये जिंदगी और शरीर दबी है मौत के एहसान में, तू भुला बैठा है जीवन अपनी पहचान में।
1: वाह देखिए राजेंद्र जी अभी अभी इन्होंने लिख दिया और सुना भी दिया।
0: हाँ बहुत बढ़िया।
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आपका संदेश इसमें क्या है राजेंद्र जी? क्योंकि आप जब कहीं जाइए ना
0: जी,
1: और सूरीनाम में जैसे होता है, तो सूरीनाम में और पहला वाला बड़ा मुसीबत से हुआ था ना, जो हमने कहा कि नेखती नेखना शस्तक में,
0: पहले वो कौन से उस स्थान में हुआ था?
1: 1959
0: पहली बार दाह संस्कार हुआ
1: सूरीनाम, और जाकर के समुन्द्र किनारे, और कौन दाम से वहां जाए थे शांता जी?
2: ओकरो डाम
1: हमने तो गलती कह दिया था, बिना
0: भिंडी नाम बोल
2: दिया
1: पर वहां जाकर के राजेंद्र जी, और बहुत हमारे धन्य है हमारे पुरखों के जिन्होंने ऐसा और जा करके हमारे लिए सूरीनाम में बनाए और ऐसा व्यवस्था किया। और आज अब जा करके जैसे कि शांता जी भी कह रहे थे कि वहाँ हमारे अब एक और बन गया है सारा मक्का में।
2: हाँ एक पे वो शबीर इशाक,
1: हाँ,
2: शबीर इशाक के दाह संस्कार जो वहाँ पे बना गया है, बनाया गया है। और निकेरी में भी है ना सही दैक पे,
1: निकेरी पे भी है
2: सही दैक पे,
1: और वहां पे भी है। सही बात राजेंद्र जी, जब देखा जाए जब उस समय पे धीरे धीरे लोग जानने लगे कि कैसे उसे और बनाया जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए कि एक शरीर जो जा करके जल सके पूरा तौर से ना, तो वहां पर निकाला गया, और हमारे जो पुरखों ने ये सोचे कि प्रयोग किया जाए वालाबा हौत। शांता जी आपको पता है क्या है वालाबा हौत? वहाँ एक लकड़ी होते है राजेंद्र जी, उसे कहते हैं वालाबा हौत, और उसको बनाया जाता था जो गाय आदि पोसते थे ना, तो उसके गाड़ करके और उसे तार लगा दिया जाता था।
0: ओ, समझ गए।
2: प्रिकल द्रात।
1: हाँ, तो गाय बाहर नहीं जाते थे। तो
0: प्लांटेशन।
1: ये क्या कहते हैं उसे?
0: प्लांट। बाड़ा, बाड़ा।
1: हाँ, बाड़ा। मुझे नहीं पता बाड़ा क्या, घेर दिया गया, घेरने
0: घेरा।
1: हाँ, तो अब ऐसा हुआ कि वो ये लकड़ी लोग प्रयोग करने लगे, और ये लकड़ी में काफी तेल होता है। ये लकड़ी एक ऐसा लकड़ी है जो कभी नहीं सड़ता। लकड़ी जो आज लगा दिया जाए और जमीन से और घेर दिया जाए, तो उसका तार दो बार बदल देना पड़ता है। तार कुछ 20 साल चलता है, बदला जाता है। पर ये लकड़ी जमीन धंस जाता है, ये लकड़ी को लोग खोद करके निकाल के और ऊपर करके और फिर दोबारा इसे अवतार लगाते हैं।
2: तो वो लकड़ी वैसे ही ताजा रहता है?
1: ताजा नहीं, उसमें
2: सड़ता नहीं,
1: सड़ता नहीं,
0: मजबूत रहता है,
1: बड़ा मजबूत होता है। इसी लकड़ी के बारे में राजेंद्र जी, मुझे आज मैं एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, और उसे देख करके मुझे ये ख्याल आया कि हमारे सूरीनाम देश में जितना इलेक्ट्रिस्पाल है ना, वो भी वालाबा हाउस को बनाया जाता है, क्योंकि वो भी सड़ता नहीं।
2: अच्छा।
1: और वही हाल है कि ऐसा देखा जाए, सुबह मैंने देख रहा था एक व्हाट्सएप बरेख में, जिसमें भारत में जैसे यहाँ हॉलैंड में ना सभी और इलेक्ट्रिस्पाल मेटल के होते हैं
2: यहाँ पे। हाँ,
1: तो भारत में कहीं कहीं भी जो इलेक्ट्रिस्पाल होते हैं ना, तो उसे पकड़ लो तो बस, और इलेक्ट्रिक मार देते हैं लोग, कितने शॉक मार देते, कितने लोग हर साल में गुजर जाते हैं
2: भारत में।
1: भारत में
2: हाँ, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक अगर आप देखोगे तो आप भी वो लफड़े में पड़ जाओगे।
1: तो अनखवास्कुट मेंस स्टार्ट होते ही, तो आप ध्यान देना, क्योंकि हमने आज सुबह अभी देखे हैं व्हाट्सएप बरेख में, और देखा कि कैसे एक नौजवान और वो पॉल जो मेटल का था पकड़ लिया और उन्हें झटका मार दिया, और बस क्या हुआ। उसके बारे में आज का विषय है ही नहीं। हमारा विषय ये है कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियाँ, उसके बारे में हम सब अभी सुनने वाले हैं दोस्तों। और ये बात है शांता जी कि जब ये बात सबको जान गए कि कैसे और जा कर के वहाँ हमारे सूरीनाम में और अस्थि तथा दाह संस्कार किया जाता था, और हॉलैंड में भी, हॉलैंड एक देश है जहाँ पर एक अच्छा तरीका से और यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता ना, ये बात ना है कि सूरीनाम में ठीक नहीं है, सूरीनाम वाला अपना जगह उससे बढ़िया नहीं है, और यहाँ हॉलैंड में जैसे कि हम सब क्रेमाटोरियम होते हैं।
2: हाँ।
1: तो ऐसा एक क्रेमाटोरियम सूरीनाम में भेजा गया
2: जी,
1: यहाँ हॉलैंड का, और यहाँ से गए सूरीनाम में नेगेटिव 5 में, और नेगेटिव 5 में वहाँ पर ले जाकर के लगाया गया। तो उसके बारे में अभी कुछ और हम सुनाने वाले हैं, क्योंकि वो भी बड़ा गंभीर और समस्या हो गए थे राजेंद्र जी सूरीनाम में।
0: जरूर, कर्म सेवा सत्कार का है, बहुत ही सुंदर

0: बहुत ही सुंदर, जो कर लो सेवा सत्कार, सेवा सत्कार चाहे सब लोग करना ही चाहिए। जब भी कोई मरता है मैं उनके साथ मरघट जाता और मरघट पर जाकर दो हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई पड़ती। उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे संसार की गपशप कर रहे हैं। इनको याद भी नहीं आ रहा कि यह मौत तुम्हारी भी मौत है, यह घड़ी तो ध्यान की थी, यह तो बस कर सोचने की थी, यही तो विचार की थी, तो विचार करते रहो।
1: राजेंद्र जी, इस बात पे तो मुझे दिल है कुछ और कहने का।
0: जरूर
1: शांता जी, ऐसा हुआ कि आप कभी गए और वैखनर से ही पे गए?
2: हाँ।
1: तो देखे कि वहां पर अब दाह संस्कार हो रहा है, वो आग ही लगते हैं।
2: हाँ।
1: आग लगते हैं तो मुझे, आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक ना एक दिन तो हमें भी उस प्रकार से जलना है? और हम ये संसार के जीवन में जी रहे, संसार के मेला में जी रहे हैं, और क्यों हम इस संसार के मेला में जीते जीते औरों से जल रहे हैं? राजेंद्र जी,
2: वो भी होता है।
1: हाँ। कभी ऐसा नहीं है हुआ?
2: हाँ।
1: क्योंकि कभी कोई ऐसे यहाँ भी हमारे कार्यक्रम में भी फोन करके कहते हैं कि भाई हमारे भाई बहन मुझसे जल रहे,
2: वो अज्ञानता है।
1: और ऐसा ऐसा होता है क्योंकि हमें ऐसा रहना है, हमें ऐसा रहना है कि ये ख्याल रखना, इसे हम अपने रोज अपने जीवन में ना लेकर चले कि हमें एक ना एक दिन मरना, जो समय आएगा तो वो तो आएगा ही आएगा। वो हमारे लिए तो ब्रह्मा ने और हमारे जीवन यानी कि हमारा जन्म भोग और मृत्यु का वो तो कर दिए। जन्म भोग हमारे खुलक और हमारी मृत्यु का और निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी कहा थे ना, तो वो तो निर्णय है, पर हम क्यों औरों से जलते हैं? हम इस पे ध्यान दे। और हमारे राजेंद्र जी की ओर हम सब बढ़ेंगे फिर कार्यक्रम। राजेंद्र जी, पर अभी तो हम सब छलांग नहीं लगा पाए।
0: हाँ,
1: असली विषय के ओर
0: जरूर लगाएंगे, असली विषय की ओर। अभी हम पहले
1: न्यूज और कमर्शियल के बाद,
0: कमर्शियल के बाद
1: और सभी सुनने वालों के साथ हम सब फिर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हम सब जो आज का विषय है कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियों को होता है क्या, तो राजेंद्र जी पहले न्यूज और कमर्शियल के ओर।
0: जरूर फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को विषय की ओर बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो की बात चल रही थी गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं। तो बढ़ते हैं इसी विषय की तरफ। पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है।
1: पतित पावनी गंगा को क्या कहा जाता है राजेंद्र जी?
0: देव नदी।
1: देव नदी,
0: देव नदी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है और मान्यता है कि गंगा ही हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है।
1: ऐसा? गंगा में स्नान करने से सभी मनुष्य

0: का पापों नाश हो जाता है,
1: सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए तो बहुत पूरी दुनिया के लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, और गंगा केवल भारत में ही है।
0: वहाँ स्नान करने से सब पापों का नष्ट हो जाएगा,
1: सब पापों का नष्ट हो जाता है, ऐसी मान्यता है।
0: मान्यता है क्योंकि लोग अपने मनमानी करते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद गंगा में स्नान करने से और जाकर के पाप करो और जाकर के धो लो, तो ये तो नहीं हो सकता ना।
1: ऐसा नहीं हो सकता।
0: आपको वहाँ तक पहुँचने, वहाँ पहुँचने से पहले आप खुद ही सुधर जाएंगे, तभी वहाँ पहुँच पाएंगे। तो शांता जी, आपने गंगा में स्नान किया?
2: हमने तो की कई बार,
0: और जा करके खूब स्नान किया,
2: और वहाँ पर भी खुश नसीबी के बात है, गौमुख यहाँ से गंगा के उत्तरीन होता है, शुरुआत होता है
0: जी
2: हिमालय में, वहाँ पे ऊंचा पे, वहाँ पर जाकर भी हमने स्नान की। बड़ा सौभाग्य की बात है।
0: ये जरूर सौभाग्य की बात होता है राजेंद्र जी, क्योंकि ऐसा है कि लोग चाहे या ना चाहे,
1: मानो तो गंगा और न मानो तो बहता पानी।
0: राजेंद्र जी, ये बात है कि अभी तो हम सब वो वृतांत सुनाने वाले थे सूरीनाम के।
1: हाँ।
0: और सूरीनाम में जो बनाया गया नई खदिफा नई खदक में, वो औदाक संस्कार के जो सोफी रत्नोसरात में ना, आपको तो नहीं पता सोफी रत्नोसरात कहाँ ना?
1: नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता।
0: अच्छा, तो उसे मैं अपना भाषा में नहीं कर पाऊंगा।
1: हाँ।
0: तो बस यही कह देता हूँ कि वहाँ बनाया गया 1995 में, और वहाँ जब बना करके सब तैयार कर दिया गया ना, अलखावा एक बदरैफ होता है, वो इलेक्ट्रिकल सब चीज़ वहाँ जा करके सब तैयारी हो गया
1: जी।
0: तो अब वो अगोर रहे थे कि कौन पहला और अपना आपको वहाँ दाह संस्कार करवाएंगे। लोग डरते थे क्योंकि उस समय मैं सूरीनाम देश में थे, और लोग डरते थे कि हाँ कहीं अभी और पूरा शरीर ना जरे तो
2: इलेक्ट्रिसिटी फॉल हो जाए तो
0: सब चीज उस। हाँ, लोग वो बन गए थे, लगभग कुछ 3 महीना होने वाले थे, पर किसी ने में वो नहीं था कि मेरा और पहला होना चाहिए।
1: वो इलेक्ट्रिकल वाले की बात कर रहे हैं?
0: ये इलेक्ट्रिकल वाला, वो सूरीनाम में एक ही बना है ना, सोफी रत्नोसरात में। तो ऐसा हुआ वहाँ पर 95 में श्रीमान गरीब जी का और पहला दाह संस्कार किया गया, पर वो दाह संस्कार ऐसा हुआ कि गाड़ी लेकर गए वहाँ ना, तो गाड़ी को कह दिया गया था कि भाई ठहरो, अभी जाना नहीं यहाँ से, क्योंकि अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ तो हो जाएगा मुसीबत। तो गाड़ी वाला और वहाँ अगोर रहे थे, और सब अब पंडित जी आकर के सब कार्य को कर चुके, तो अब वो और यानी कि जो लाइक केस में होते हैं ना, वो अंदर धरते हैं, तो रखा गया, और अब उसे ऑन करने का, जैसे यहाँ पर बटन दबाते हैं, तो वहाँ पर ऑन करने को हुआ, तो वो दबाते हैं बटन पर ऑन नहीं हो रहा। तो अब हुआ मुसीबत। अब उन्होंने कोशिश किए, पर ऑपरेटर थे और उन्हें टेक्निकल के बारे में थोड़ा कम जानकारी थे, तो फ़ोन किया गया, और जो फेरमा जो मिस्त्री वाला अलखावा था, तो उन्हें आते आते 1.5 घंटा और लग गया, और जब वो आकर के पहुँचे तो वो देखे और दबाए हमें, क्योंकि मैं वहाँ था, तो दबाकर उन्होंने देखा, तो देखा कि आग तो लगा, पर इग्निशन के लाइट जो होता है ना, तो लाइट वो बल्ब जल गया था। तो उसके कारण बड़ा आशंका था, और हम सब वहाँ थे, और बड़ा ये था कि अब क्या होगा। पर फिर भी नेहती फैन नहीं हद तक से वहाँ पर और दाह संस्कार होने लगा, और यानी कि जो जैसे हॉलैंड में होते हैं। और फिर देखा जाए राजेंद्र जी कि ये इस समय एक चीज और हो गया है जो भारत में मैं गत दिनों देखे हैं, भोपाल शहर में ऐसा चीज बना दिया गया है कि लकड़ियों से दाह संस्कार नहीं किया जाता, अब बना दिया गया है गोबर के लकड़ी बनाया जाता है
1: कंडा।
0: हाँ, अब वहां मशीन बना दिया गया है, मशीन बना दिया गया है कि गोबर के लकड़ियों से, गोबर से बनाया जाता है लकड़ी, और उससे और जाकर के दाह संस्कार किया जाता है। जितना लकड़ी पहले कहा जाता है कि पहले लगता था उसका आधा गोबर से, और उसमें उतना शक्ति होता है कि दाह संस्कार हो जाता है। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते तो फिर हम अपने और विषय के आगे बढ़ाएंगे।
1: जरूर।

0: बंदे किस पर करे गुमान, तू है दो दिन का मेहमान। बहुत ही सुंदर जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है उसकी कोई सराहना नहीं है। बढ़ते हैं अपने विषय की ओर आगे।
1: कैसे बढ़ूं?
0: जरूर बताइए।
1: बढ़ना है, विषय को बढ़ाना है।
0: हाँ।
1: पर ज़्यादा मिठाई को खा लिया।
0: हाँ।
1: और हमारे बड़े बहन मिठाई डिब्बा के डिब्बा ला करके रख दिया। वैसे तो हमें इतना खाना नहीं था, बस राजेंद्र जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं,
2: इसलिए हाँ, तुम्हारा हाँ। शब्द जो है वो मीठे मीठे निकलता है राजेंद्र का भी।
0: जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कथा है। एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, प्रभु मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे।
1: राजेंद्र जी, ये अब समस्या ऐसा हो गया है कि इसे थोड़ा हमारे हिंदुस्तानी सरनामी में कुछ इसे और बताइए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात यही हो जाता है ना।
0: हाँ, महत्वपूर्ण बात है कि जब सब लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाए, तो गंगा चिंतित हो गई कि ये सब लोग पाप धुलने के लिए यहाँ आते, तो मैं कैसे ये सब
1: कैसे मैं पवित्र हूँ,
0: मैं कैसे इनको पापों को सब में पाप मेरे पे धुलते, लेकिन मैं इनसे कैसे वो रूबरू होंगी? तो फिर वो भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में गई और उन्होंने पूछी ला वहाँ कि ये लोग सब आते पाप धोने के लिए और मैं कैसे इनका बोझ उठाएं। तो फिर विष्णु भगवान बोले कि जब साधु संत स्नान करने के लिए आएंगे तो तब स्वयं वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
1: ये ये ये है, यानी कि सबसे मूल्य बात ये है कि जब साधु संत वहाँ पर स्नान करने को जाए,
0: साधु संत और वैष्णव लोग जब वहाँ पे वैष्णव लोग जाए तो अपना आप सब पाप धुल जाएंगे।
1: ऐसा है,
0: ऐसा
1: तो ये बात है आज का विषय का, ये एक मूल्य बात हुए ना,
0: मूल्य बात है।
1: और राजेंद्र जी, और क्या है इस वृतांत में?
0: गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि इसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए, लेकिन यह अस्थियां जाती कहाँ हैं? ये चीज बताएंगे आपको इस सुंदर से गीत के बाद।
2: मृत्यु के बारे में ये कहना चाहती हूँ, अभी जैसे हमने सुना, अभी हमारी प्रोग्राम जैसे चलती है,
0: हाँ।
2: मृत्यु के लिए बहुत रास्ता है ना, मरने के लिए बहुत रास्ता है, पर जन्म लेने का सिर्फ एक, वो माँ।
0: हाँ,
1: तो ये तो बड़ा गंभीरता बात बता दिया शांता जी ने।
2: हाँ, मुझे ऐसे ही लगा कि बताना चाहिए, तो इस पे हम भी, क्योंकि हम कई तरीका से मर सकते हैं।
1: हाँ, सही बात,
2: और जन्म लेना सिर्फ एक ही है, माँ के गर्भ से।
1: राजेंद्र जी, शांता जी ने अपना वृतांत को सुना ही चुके हैं और गीत जो आप धरने वाले हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत रखने वाले आप।
0: मत बुरे कर्म कर गोरख धंधा, इसी अवशेष में हम क्यों ना एक सुंदर सा जो बुरे कर्म कर बुरे बंधी, उस गीत की ओर बढ़ते हैं और सब लोगों को पसंद आएगा।